क्यानो नश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए है तुम्हारा सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ मैं आ तुम्हारा दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक ता श्रोताओ कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कने तुम्हारा सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंजे।

2.2 MHz पर यह तुहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडी।

दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये तुम्हारा सारेंदा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेश श्रोताओं तुम्हारा सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओं ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

कंचन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो कंचन धर्मशाला ने गूंज

सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुनदे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पन दी।

0: पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। तुम ना गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो,
9: इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
8: रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा, पराई औरत को तू काय को छेड़ता।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

खूबसूरत नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने, इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: किसी शायर ने बड़ा खूब कहा बाजी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अब।

0: पानी में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: मैं 3-2-1 करूंगा, तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
9: ओह नो, यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
8: रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है?

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। श्रोताओ, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। अब से लेकर 11 बजे तक रहेंगे श्रोताओ आपके साथ, करेंगे आपका मनोरंजन, ढेर सारी जानकारियाँ साझा करेंगे और करेंगे आपके साथ बातचीत। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 90%। जी हाँ, नमी बरकरार है और नमी बरसात का मौसम है, होनी भी चाहिए। वहीं बात करें श्रोताओं आज के मौसम की, तो आज मौसम जो है बहुत ही खुश मिजाज है, धूप खिली हुई है और ये धूप हमारे लिए जीवन में कितनी ज़रूरी है और हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है ये आप सभी जानते ही हैं। इसके बारे में कार्यक्रम में मैं थोड़ा बहुत आपके साथ कह सकते हैं ज्ञान साझा करूंगी और गीत भी सुनाएंगे कार्यक्रम में प्यारे प्यारे से। कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ। उदित नारायण और अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है, फिज़ा फिल्म का गीत, आप सभी के लिए, आप सभी के रेडियो सेट्स पर। श्रोताओं, इन्जॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और यूँ ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। अपने कौशल और प्रतिभा को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कल को शून्य से शुरुआत करनी पड़े तो डर ना लगे। जी हाँ श्रोताओं, आज का विचार, अपने कौशल और प्रतिभा को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कल को शून्य से भी शुरुआत करनी पड़े तो डर ना लगे। ज़िंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर भी रहे हैं श्रोताओं। और होता ये है कि कई बार अगर हमारी नौकरी चली जाती है या कोई ऐसा काम जो हम लंबे समय से कर रहे होते हैं वो हमसे छूट जाता है, छिन जाता है, या किसी भी वजह से हमें वो छोड़ना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। और कई बार हम उस काम के इतने आदी हो चुके होते हैं कि हम उससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहते। और वहीं दूसरी ओर हमारे अंदर इतना हुनर, इतना कौशल होने के बावजूद अगर हमें एक आरामदायक नौकरी मिलती है तो हम उसी में रहना चाहते हैं। और अगर कल को वो नौकरी चली जाती है या वो जो भी कोई काम है जिसमें हम आराम से रह रहे हैं वो अगर छूट जाता है तो हमें ज़िंदगी से बहुत निराशा होती है। जबकि करना ये चाहिए कि हमें जो भी हमें आता है उसमें खूब निखार लाएं, अपने कौशल को, अपनी प्रतिभा को खूब बढ़ाएं, ताकि कल को अगर उस जगह से हमें जाना पड़ता है, उस नौकरी को छोड़ना पड़ता है, उस काम को छोड़ना पड़ता है, तो हमें ये ना लगे कि हम ज़ीरो पे पहुंच गए और ख़त्म हो गए। ज़ीरो पे पहुंच करके भी शुरुआत की जा सकती है श्रोताओं, और ये तभी हो सकती है जब हम अपनी प्रतिभा और अपने कौशल पर निरंतर काम करते रहें। और ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम नीचे गिरते हैं, बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथों से निकलती हैं, तो हम रोने नहीं बैठ जाते, अपने आप पे विश्वास करते हैं अगर हमारे अंदर कोई प्रतिभा, कोई कौशल, कोई हुनर है, और फिर शून्य से खड़े होते हैं। और अगर हमारे अंदर पूरा आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी है तो हम एक बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं श्रोताओं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए किसी भी नौकरी को पकड़ के जकड़ के ना बैठ जाएं। अगर आपको लगता है कि कम्फर्ट जोन ज़्यादा हो गया है हमारा, तो आपके अंदर कोई प्रतिभा, हुनर है तो उसको आप निखारते रहें, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता श्रोताओं, कब कौन कहां से कहां पहुंच जाए और कौन कहां से कहां आ जाए। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपने हुनर और जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उसको निरंतर निखारते रहें, निरंतर उसमें आप प्रयास करते रहें। और वक्त अगर आपको लगे कि ज़िंदगी में ऐसा आया है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो यकीन मानिए ख़त्म कुछ नहीं होता। जब भी ज़िंदगी में नई शुरुआत होनी होती है कुछ ना कुछ तो खत्म होता ही है। इसलिए मस्त रहें, खुश रहें, सुनते रहें रेडियो गुंजन और अपने प्रतिभा और हुनर को यूं ही चमकाते रहें, लिशकाते रहें। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम में अब आगे आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत। और श्रोताओ ये गीत सुन करके आपको थोड़ा सा राज दरबार वाला जो फील है वो आ सकता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि गीत संगीत हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं, हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। और कई बार कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको सुन करके हम बिल्कुल वहीं उसी माहौल में चले जाते हैं। तो अगला जो कार्यक्रम का गीत है वो कुछ ऐसा ही है। इन्जॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और मैं यहीं हूँ, गाना सुन के आपके साथ फिर बातें करूँगी, जानकारियाँ साझा करूँगी। इन्जॉय कीजिए ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

जी हाँ श्रोता, और राज दरबार से थोड़ा सा आपको वापस लाते हैं। और अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे समाचार। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा 9:30 पर भी। और अब लीजिए सुनिए कुछ ही देर में

जी श्रोताओ, 9:20 होने ही वाले हैं और अब आप सुनेंगे समाचार। गुड मॉर्निंग धर्मशाला जारी रहेगा 9:30 पर भी।

और हमीरपुर के नादौन खंड की 63 पंचायतों में कूड़ा कचरा संग्रहण की व्यवस्था के लिए निरीक्षण करवाई गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इधर प्रदेश में इस अवसर पर वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन चयनित शिक्षण संस्थानों के साथ मंडी कॉलेज में भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए स्थानीय खेलो इंडिया संवाद और युवा संवाद होगा, जिसमें खेल प्रतिभा ओलंपिक 2036, युवा नेतृत्व, विकसित नशा मुक्त युवा जैसे विषयों पर विचार साझा किए जाएंगे। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज 6 दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी।

आज सदन में दो बड़ी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिनमें पहली हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड की 17वीं लाए जाएंगे, जिनमें नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संचालन और उसकी लीज अवधि बढ़ाने के और कल के मुद्दे

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2026 के लिए प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है और उत्पादन की अनुकूल संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच अब हिमाचल प्रदेश में भी इस खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में कल स्वाइन फ्लू के 4 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वायरस ने सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि कल अस्पताल में स्वाइन फ्लू के कुल 8 सैंपलों की जांच की गई, इनमें से 4 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित मरीजों में 72 और 85 वर्ष के 2 बुजुर्ग और 7 माह व 1 साल के 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।

0: करता। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: विकास खंड नदौन की 63 ग्राम पंचायतों में अब नियमित कूड़ा कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू होगी। योजना के तहत 63 पंचायतों को 14 क्लस्टरों में बांटा जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में 3 से 5 पंचायतें शामिल होंगी और एक ई रिक्शा तैनात रहेगा। इसके लिए दिनवार शेड्यूल और रूट निर्धारित किए जाएंगे। वाहन गांव-गांव पहुंचकर घरों और अन्य स्थानों से कचरा एकत्रित कर निर्धारित डंपिंग साइट पर पहुंचाएंगे। ई रिक्शा का संचालन और रखरखाव ग्राम पंचायतों के जिम्मे रहेगा। प्रत्येक पंचायत को इसके लिए सालाना 1 लाख रुपए का बजट उपलब्ध कराना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित कचरा संग्रहण व्यवस्था सुचारू रूप में मदद मिलेगी। वहीं ई रिक्शा के नियमित संचालन से ग्रामीणों को कूड़ा फेंकने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में संगीत शिक्षकों के 118 पदों को निश्चित मानदेय के आधार पर आयोजित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए कुल 63 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 58 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण अभी भी 72 पद खाली रह गए हैं। सचिव ने बताया कि यह अंतिम परिणाम सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और अंकों सहित आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। उद्यान विभाग की सहायता से जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां के मैकेनिकल इंजीनियर प्रणव धर ने बैंक की नौकरी छोड़कर मशरूम उत्पादन को अपना व्यवसाय बनाया है। उन्होंने करीब 60 से 70 लाख रुपए की लागत से आधुनिक मशरूम यूनिट स्थापित की है, जिससे वे अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: जिला कांगड़ा के नगरोटा बगमा के समलोटी गांव के मैकेनिक इंजीनियर प्रणव धन ने बैंक की नौकरी छोड़कर मशरूम उत्पादन को अपना व्यवसाय बनाया है। उद्यान विभाग की सहायता से उन्होंने करीब 60 से 70 लाख रुपए की लागत से आधुनिक मशरूम ग्रोइंग यूनिट स्थापित, जिसमें विभाग की ओर से 15 लाख रुपए की सहायता मिली है। फार्म में पूरे वर्ष मशरूम उत्पादन किया जा रहा है। 3 कमरों में सालाना 50 टन से अधिक उत्पादन की क्षमता है और करीब 8 से 10 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। पिछले 6 महीनों में फार्म से करीब 40 लाख रुपए का राजस्व मिला और लगभग 8 से 9 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। अधिकतर समाचार पत्रों ने विधानसभा सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के हवाले से लिखा है, स्टाफ नर्सों की भर्ती आउटसोर्स पर नहीं, राज्य चयन आयोग से मेरिट के आधार पर होगी। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, हिमकेयर सहारा योजना बंद नहीं होगी, स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान दी जानकारी। अमर उजाला के शब्द हैं, हिमाचल में स्वाइन फ्लू की दस्तक, कांगड़ा में सामने आए 4 मामले। दैनिक सवेरा टाइम्स ने जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है, फुटेज से खुल गई सुक्खू सरकार के झूठ की पोल, डॉक्टरों और मेडिकल टीचर्स को 31 मार्च 2027 तक एक्सटेंशन शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है। मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। स्कूलों के दाखिला फॉर्म में नहीं होगा जाति सूचक का कॉलम, खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में प्रकाशित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को करेंगे संबोधित। मंडी में राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का होगा आयोजन। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 6ठा दिन, गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर विधायकों द्वारा 5 बड़े संकल्प किए जाएंगे प्रस्तुत। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की दस्तक, टांडा मेडिकल कॉलेज में 4 नए मामले पाए गए पॉजिटिव। केंद्र सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से इसकी आपूर्ति की शुरू। और हमीरपुर के नादौन पंचायतों में कूड़ा कचरा संग्रहण की व्यवस्था के लिए ई रिक्शा करवाई गई उपलब्ध। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब समाचारों के बाद विज्ञापन के बाद सभी का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। अब सीधा सीधा मनोरंजन की ओर लिए चलते हैं आपको, सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन 17 से 20 अगस्त 2026 तक देहरादून में किया गया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा एवं उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। भारत के विभिन्न राज्यों से भी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के लगभग 11 खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें ऑकलैंड हाउस स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स के 2 विद्यार्थी भी शामिल थे। इनमें ऑकलैंड हाउस के कक्षा 10 के छात्र समर्थ अत्री ने जूनियर बी पुरुष वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। समर्थ ने प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया में कुल 22वां स्थान हासिल किया। समर्थ अत्री को इस प्रतियोगिता में 1500 मीटर दौड़ में 2:51 का शानदार समय दर्ज उन्होंने किया। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया तथा एशिया में 21वां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 1000 मीटर स्पर्धा में 1:49 का प्रभावशाली समय दर्ज किया और एशिया में 27वां स्थान प्राप्त किया। 500 मीटर स्पर्धा में भी समर्थ ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एशिया में 16वां स्थान हासिल किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं 90 के उस दौर में जब गीत सिर्फ गीत नहीं होते थे, सीधा दिल से रूह तक उतरते थे। वैसा ही एक गीत आप सभी के लिए, आप सभी की नज़र 1942 और लव स्टोरी फिल्म से। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब कार्यक्रम में जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में। तो 27 अगस्त 1870 भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई। 27 अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला सफल तेल का कुआं खोदा गया। 27 अगस्त 1939 जेट इंजन से चलने वाला विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से अपनी पहली उड़ान भरी थी। 27 अगस्त 1976 भारतीय सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम को मिलिट्री नर्सिंग सेवा का निदेशक नियुक्त किया गया था। 27 अगस्त 1991 मालदोवा ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 27 अगस्त 1972 दिलीप सिंह राणा, जिन्हें पूरी दुनिया महान पेशेवर पहलवान द ग्रेट खली के नाम से जानती है, उनका जन्म भी आज ही के दिन यानी 27 अगस्त 1972 को हुआ था। 14 ये था इतिहास के पन्नों से और अब चलते हैं वर्तमान में, लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में आगे मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, अब एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप जो हैं वो हम सबको झेलने पड़ रहे हैं। और बात करें नेपाल की, तो नेपाल में बहुत ही एक भयानक बाढ़ कह सकते हैं वो आई हुई है, और जिसमें अब तक 95 लोगों के शव जो हैं वो मिले हैं, और संख्या जो है वो इससे भी अधिक बढ़ सकती है। और इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं और त्रासदियां हैं उनके बारे में हम यही आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि प्रकृति जब अपनी खूबसूरत छटा बिखेरती है तो हमें मंत्रमुग्ध करती है, वहीं दूसरी ओर जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर वो नहीं देखती कि उसके आगे क्या है। और नेपाल के जिस स्थान पर ये बाढ़ आई है उसका पहले का दृश्य और अभी का आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे भी और अखबारों में भी, कि पहले कितना सुंदर नदी के आसपास दोनों तरफ कितना सुंदर गांव कह सकते हैं या ये परिवेश था, बसे हुए घर थे, सुंदर सुंदर 2 मंजिला 3 मंजिला और उससे भी ज़्यादा बड़े जो है वो भवन थे। और जैसे ही ये बाढ़ आती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये प्रकृति का हमारी ओर इशारा भी है श्रोताओं कि हम इंसानों को कभी भी इतना अहम नहीं पालना चाहिए और इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। कुदरत जब अपना रंग दिखाती है तो कुछ ऐसा ही करती है। खैर, हम उन सब लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं और जिन लोगों के भी परिवार के सदस्य इस त्रासदी में गए हैं उनको ये दुख सहने की क्षमता भगवान दे। और अभी भी तलाश जारी है, बहुत से लोगों के जो परिवार के सदस्य हैं अभी नहीं मिले हैं। और घर बार सब कुछ तहस नहस हो जाने के बाद लोगों के घरों में एक चीज़ भी नहीं है जो बची हो। घर ही नहीं बचे तो घर की चीज़ें कहाँ ही बचेंगी। लेकिन फिर भी जितने लोग सुरक्षित बच गए हैं उनके लिए ईश्वर उनको इतनी ताकत दे कि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से खड़ी कर सकें। और श्रोताओं, एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा 30 मार्खा क्यों ना हो जाए, हम सबसे ऊपर प्रकृति है, नेचर है, ईश्वर है, भगवान है, और हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब एंजॉय कीजिए कार्यक्रम में अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि आज मौसम जो है, मैंने कहा नहीं था बल्कि आज वाकई में मौसम जो है बड़ा खुश मिजाज है, धूप निकली हुई है। और धूप से एक बात याद आई कि कल भी सुबह धूप थी और पिछले काफ़ी दिनों से लगभग कह सकते हैं 1-1.5 महीने से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं थी और मूड जो है वो ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चिड़चिड़ा सा हो रहा था क्योंकि घर के कामकाज नहीं हो पा रहे थे धूप ना होने की वजह से और कपड़ों में नमी थी, यहाँ तक कि रज़ाई और कंबल जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी हल्की हल्की सी बरसात वाली जो स्मेल है वो आने लगी थी। तो कल जैसे ही धूप निकली तो मेरे दिमाग में बड़े सारे काम आ गए कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और अंदर से मैं बहुत खुश हुई कि चलो जितनी देर भी धूप निकलेगी उतनी देर बहुत कुछ निपट जाएगा। और मुझे लग रहा था कि मेरे काम निपट जाएंगे इसलिए ये जो है मैं खुश हूँ, लेकिन इसका एक कह सकते हैं साइंटिफिक भी कारण है श्रोताओं कि धूप जो है वो हमारे लिए, शरीर के लिए तो ज़रूरी होती ही है लेकिन हमारे मूड को भी धूप जो है वो बूस्ट करती है, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करती है, वही हार्मोन जो हमें जिम में एक्सरसाइज करके मिलते हैं या कोई भी अच्छा मनचाहा काम करने से हमें जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वही काम सूरज की धूप जो है वो भी करती है। और वही असर था जो कल मुझे अपने आप में मैंने महसूस किया और आप सभी ने भी महसूस किया होगा। खासकर महिलाएं तो काम काज को लेकर के खुश हो जाती हैं लेकिन हमारे बॉडी में धूप जो है वो सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है और उसकी वजह से हमारा मूड बूस्ट होता है, हम हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। और श्रोताओ इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, मेन हम कह सकते हैं मोटा मोटा फ़ायदा, बच्चे भी जानते हैं कि धूप में बैठने से जो है वो विटामिन डी हमारे शरीर को मिलती है। धूप विटामिन डी को हमारे शरीर में अवशोषित करने में ज़रूर मदद करता है, साथ ही हमारे जो मूड है उसको भी सुधारता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको भी सूरज की जो धूप है वो बढ़ाती है, इसलिए धूप जो है वो बेहद ज़रूरी है। और कौन सी धूप ज़रूरी है श्रोताओं, सुबह की जो 7 बजे से 9 बजे की धूप होती है उसमें आप थोड़ी देर 10-15-20 मिनट ज़रूर बैठें, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि ज़्यादा ही समय हो गया है और धूप जब हमारी स्किन को जलाने लगे या हमारा चेहरा ही लाल दिखने लगे तब तक धूप में नहीं खड़े रहना है, थोड़ा सा अपनी स्किन को बर्न होने से भी बचाना है। विटामिन डी और धूप के और भी बहुत से फ़ायदे हैं श्रोताओं, कार्यक्रम अभी जारी है, आपको सुनाएंगे हम कितने और फ़ायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका मनोरंजन करना, आपको गीत संगीत की ओर ले जाना भी ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इस समय धूप, सूरज की धूप के बारे में। और श्रोताओं सूरज की ये धूप हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, इसी विषय पर मैं बात कर रही हूँ कि सूरज की जो धूप है वो श्रोताओं हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करती है और ये हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम, शरीर के कैल्शियम को इस्तेमाल करने में मदद करता है और

बहुत ही मज़ेदार बात जो मैंने गीत से पहले आपसे कही कि मूड को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। प्राकृतिक रोशनी शरीर की जैविक घड़ी और नींद जागने के चक्र को नियमित रखने में मदद करती है। आपने भी देखा होगा बहुत दिनों तक, बहुत समय तक अगर आप धूप नहीं लेते हैं तो आपकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब रहती है, और जब आप शरीर को जितनी रोशनी चाहिए, सूरज की धूप चाहिए, उतनी अगर ले लेते हैं या उसका आधा हिस्सा भी ले लेते हैं तो हमारा मूड जो है वो भी ठीक होता है, हमारा नींद का जो चक्र है वो भी धीरे धीरे सही होने लगता है। श्रोताओ, विटामिन डी यानी सूरज की जो रोशनी है, धूप है, वो सामान्य हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षक क्षमता है उसको भी ठीक रखने में मदद करती है। और बेहद ज़रूरी है सुबह की धूप लेना, हल्की सुबह की धूप लेना आमतौर पर तेज़ धूप लेने से बेहतर रहता है। दिन की दोपहर की जो तेज़ कड़कती धूप होती है उसकी बजाय आप सुबह 7-8-9 बजे तक अगर 15-20 मिनट धूप में रहते हैं तो वो धूप आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मूड के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। और श्रोताओ, धूप के बारे में एक बहुत ही अहम और ज़रूरी बात ये है कि हमें लगता है कि धूप लेनी ज़रूरी है, इसलिए हम दिन के किसी भी पहर में कई बार दोपहर कड़कती धूप में जो है हम बैठ जाते हैं, और उस तेज और एकदम तीखी धूप का उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि सुबह की धूप का होता है। बजाय तेज धूप में बैठने से हमें उल्टा नुकसान हो सकता है, हमारी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है, और सनबर्न होने से कैसा लगता है आप सभी जानते ही हैं, इसलिए सनबर्न होने से भी अपने आप को बचाएं, लेकिन सुबह की फ्रेश ताज़ा तरीन धूप जो है वो ज़रूर लें, अपने शरीर को, अपने मूड को बूस्ट करें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और धूप की बात करते करते मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं स्टूडियो के अंदर बैठी हुई हूं और बाहर सभी लोग धूप का मज़ा ले रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो जितनी देर में मैं बाहर निकलूं और धूप फिर से चली जाए, क्योंकि धर्मशाला है, धर्मशाला का मौसम है, कुछ कह नहीं सकते कब धूप खिले और कब बारिश आ जाए। इसलिए जो लोग इस वक्त बाहर हैं वो धूप में ज़रूर बैठें थोड़ी देर। धूप में बैठ के आप चाय की चुस्कियाँ भी ले सकते हैं, अपने छोटे मोटे घर के कामकाज भी कर सकते हैं। और श्रोताओं, मैं स्टूडियो के अंदर बैठी हुई हूँ अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ, कार्यक्रम इंजॉय भी कर रही हूँ और आपके साथ बातचीत भी कर रही हूँ, गीत भी सुनवा रही हूँ, और कार्यक्रम में अब समय हो रहा है श्रोताओं आपको एक और प्यारा सा गीत सुनाने का, तो आइए इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, धूप के बारे में बात कर रहे हैं इस समय हम, और धूप जो है हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे मूड के लिए कितनी ज़रूरी है, और हमारी नींद, हर चीज़ को व्यवस्थित करने में धूप का, सूरज की धूप का, सूरज की किरणों का बहुत अहम स्थान है। वहीं दूसरी ओर बात करें, बरसात का मौसम लंबा चौड़ा चलता है, खासकर हिमाचल में, धर्मशाला में, और कई सारे काम, घर के कामकाज जो हैं वो धूप पे निर्भर करते हैं। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ पहने जाने वाले कपड़े रोज़ धुलते हैं और रोज़ सूखते भी हैं। आजकल ड्रायर आ गए हैं, वॉशिंग मशीन में भी काफ़ी हद तक कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन सूरज की धूप जो है उन कपड़ों को लगना भी ज़रूरी है। मशीनों में हम कितना ही काम कर लें, जो प्रकृति हमें फ़ायदा देती है वो मशीनें हमें नहीं दे सकती, इसलिए हमारे रोज़ के पहने जाने वाले कपड़ों को भी धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कह रहे हैं कि आज धूप बड़ी अच्छी है, अगर आप थोड़ा सा फ्री हैं तो आप अपने कपड़ों को, यहाँ तक कि जूतों को भी, कई बार फंगस लग जाती है बरसात के मौसम में, उनको भी हम धूप में सुखा सकते हैं जब तक कि धूप निकली हुई है। और ये धूप का सबसे बढ़िया और अच्छा फ़ायदा ये लगा श्रोताओं मुझे कि हमारे मूड को एकदम से बूस्ट करना, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करना, और अंदर से ऐसे लगता है कि एक वो कह सकते हैं रिचनेस वाली फील आती है जब बड़े दिनों के बाद धूप निकलती है। तो आज वही फील आ रहा है, और इस एहसास को यूं ही मत जाने दीजिए। आप जो भी छोटे छोटे काम करना चाहते हैं आज के दिन, वो ज़रूर कीजिए, धूप का मज़ा लीजिए। और साथ ही साथ कार्यक्रम का अगले प्यारे से गीत का मज़ा लीजिए, बहुत ही प्यारा सा गीत दोस्तों, भूल भुलैया फिल्म का, आप सभी के लिए, आप सबकी नज़र। एंजॉय कीजिए और बने रहिए अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोताओ, एम जी श्री कुमार और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत। भूल भुलैया फिल्म से इस गीत को हमने लिया था। और श्रोताओ, जो संगीत प्रेमी हैं उनको ये गीत बहुत ही पसंद है। वैसे ये गीत है ही भी बहुत ख़ास, और भारतीय क्लासिकल संगीत का इसमें टच है। और इसका जो अंतिम हम कह सकते हैं अंतरा है, या लास्ट की जो लाइनें हैं उसमें जो सरगम है प्यारी सी, वो हर संगीत प्रेमी को अपने साथ साथ गाने पे मजबूर करती है। और जो साथ साथ गा नहीं पाते वो कम से कम इसको सुन करके सुकून महसूस करते हैं और अलग ही खुशी महसूस करते हैं। और वही खुशी आप सभी ने महसूस की ही होगी इस गीत को सुन करके। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लिए चलते हैं आपको जानकारियों की ओर। श्रोताओं, कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले गग्गल के सभी प्रभावितों के पुनर्वास के लिए हिमाचल सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले परिवारों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें उनका हक दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने विधानसभा में करीब 60 से 70 परिवारों के उचित मुआवजे के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन का लाभ भी देने का सरकार ने आश्वासन दिया है। पठानिया ने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित परिवारों को उनका उचित हक दिलाने के लिए सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा, पात्र परिवारों को नियमानुसार मुआवजा देने के साथ उनके लाभ भी उन्हें दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि गग्गल परिवारों के जो लंबे समय से सरकारी अथवा पंचायत द्वारा देवभूमि पर जो लोग रह रहे हैं, एयरपोर्ट विस्तार के कारण इन परिवारों के सामने विस्थापन की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजे और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार प्रदेश के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ रही है। अधिकांश प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि गग्गल क्षेत्र एयरपोर्ट विस्तार से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले इलाकों में शामिल है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि ये परिवार दशकों से गग्गल में रह रहे हैं और क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित होने वाले किसी भी परिवार को बीच मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार का दायित्व है कि प्रभावितों को कानून एवं नियम के तहत उनका अधिकार मिले। श्रोताओ, ये थी जानकारी 91.2 MHz पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। इस समय कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला हम एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओ, और अब कार्यक्रम में एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ इस समय आप कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और श्रोताओ आज है 27 अगस्त और कल बहुत ही खास पावन पर्व रक्षाबंधन का भारतवर्ष में मनाया जाएगा। ना कि भारतवर्ष बल्कि जहाँ पे भी हमारे भारतीय रहते हैं वो सभी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधेंगी और ये बहन भाई के प्यार का प्रतीक, एक दूसरे को ये एहसास दिलाने का कि तुम चाहे जैसी भी सिचुएशन में परिस्थिति में हो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, हर मुश्किल पे वो तुम्हारा साथ देगा। और भाई के द्वारा की गई यही बात या कहें कि यही प्रतिज्ञा बहन को मरते मरते भी जिंदा कर देती है। श्रोताओ बहन भाई का रिश्ता बहुत ही अलग होता है। बचपन के वो झगड़े हों या बड़े होकर के समझदारी वाली बातें या शादी के बाद अपने अपने घरों में सबका व्यस्त हो जाना, और ज़िंदगी का यही नियम है कि हम सब जन्म लेते हैं तो बड़े भी होते हैं और जिम्मेदारियों के चलते अपने अपने घरों में परिवारों में भी व्यस्त होते हैं। बात करूंगी थोड़ी सी उन बहनों की जो बहनें शादी करके अपने अपने घरों में व्यस्त हो गई हैं, या यूं कहें अगर आप लोग मेरी बात को बहुत थोड़ी देर के लिए ध्यान से अगर सुने, मेरी गुजारिश रहेगी कि एक बुआ जो उस घर की बेटी थी अब वो उस घर की बेटी नहीं रही, बुआ हो गई है। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, खासकर वो बहनें वो महिलाएं इस बात को सोच पाएंगी और महसूस कर पाएंगी कि उस बुआ के दिल पे क्या बीतती है। एक बहुत ही प्यारी सी कविता आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे वर्तमान समय के एक युवा कवि हैं ज्ञान प्रकाश आकुल जी, उनकी कविता मैंने पढ़ी और मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि समय है और आप श्रोताओं के साथ भी साझा की जाए ये कविता। कविता कुछ इस तरह से है श्रोताओं की, बुआ अब बूढ़ी हो चुकी है, कि वो बुआ जो पहले उसी घर की बेटी थी वो अब बूढ़ी हो चुकी है और हर सावन में वो मायके चली आती है। बुआ बूढ़ी हो चुकी है, हर सावन में मायके चली आती है, कोई नहीं बुलाता है फिर भी ना जाने क्यों आ जाती है। बापू के संग विदा हो गए सब अधिकार, द्वारे के आंगन चौखट और कोठरी चली गई अम्मा लेके। सूखे हुए ताल से जाकर जाने क्या क्या बतियाती है, आंखों में मोतिया बिंद है, जाने कैसा धुआं मचा। बचपन में जो नीम खड़ा था अब बस केवल ठूंठ बचा, उसी ठूंठ के नीचे रुककर कुछ भूला बिसरा गाती है। हर पीपल बरगद गलियारे से बचपन का उसका नाता है, खुद ही चलकर आ जाती है, कोई नहीं बुलाता है। जाते समय जरा से चावल हर घर में बिखरा जाती है, बुआ अब बूढ़ी हो गई है, कोई नहीं बुलाता है, हर सावन खुद ही आ जाती है, कोई नहीं बुलाता, हर सावन खुद ही आ जाती है। श्रोताओं ये कविता मेरे दिल को बहुत अंदर तक छू गई थी और मेरी जो बहनें श्रोता इस समय सुन रही हैं और जो अब उस घर की बेटियां ना रह करके उस घर की बुआ बन चुकी हैं या थोड़ी और बड़ी अवस्था उम्र में चली गई हैं, उनके दिल को ये कविता बहुत छुई होगी। और हम सभी जानते हैं कि जो बेटी एक दिन जिस घर की बेटी होती है उस घर में उससे खुशियाँ होती हैं, जैसे जैसे समय बीतता है वो बुआ बनती है, बुआ के बाद बहुत सी हमारी बुआएँ हैं जो दादी भी बन चुकी हैं और उनको हमने कहीं ना कहीं बिसरा दिया है, भुला दिया है, लेकिन वो दादी बन चुकी बुआ और वो बुआ बन चुकी बेटी कभी उस घर की बेटी थी और उसी बेटी से उस घर का बहुत गहरा नाता था। वो उम्र में बढ़ चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन अभी भी उसके दिल में उसके जहन में कहीं ना कहीं वो छोटी नटखट बेटी है जो उस घर में पैदा हुई, पली बड़ी, अटखेलियाँ की, भाई के साथ लड़ाइयाँ की, मस्ती की, माँ बाप के साथ अधिकार जताए, वो सब कुछ उसके लिए अभी भी उस घर में है। चाहे वो 80, 85, 95 साल की बुजुर्ग महिला हो जाए लेकिन उसके लिए उसके माँ बाप का घर अभी भी वही है।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं मैंने थोड़ा सा गंभीर टॉपिक छेड़ दिया है कह सकते हैं, क्योंकि बेटियों का रिश्ता उनके मायके से बहुत गहरा होता है। वो सारी उम्र चाहे एक राजमहल में बिता दें, लेकिन मायके की वो छोटी सी कुटिया भी उनके लिए किसी राजमहल से कम नहीं होती है। ऐसा ही होता है बेटियों का अपने माँ बाप के साथ, अपने मायके के साथ रिश्ता। लेकिन थोड़ा समय बदलता है, बेटी बुआ बनती है, बुआ से दादी बनती है, और मायके वाले उसको भुला देते हैं, बिसरा देते हैं। बुआ का मायका, जिस आंगन में कभी उसकी हंसी गूंजा करती थी, आज उसी आंगन में उसके नाम की जगह भी कम पड़ गई। भाई बड़े हो गए, घर की दीवारें भी ऊँची हो गई, बस बुआ के मन में अब भी वही बचपन की खिड़की खुली है। वो आज भी राखी के धागों में अपना बचपन ढूंढती है, उसी पुराने संदूक में रखी यादों से चुपके चुपके बातें करती है। मायके वालों ने शायद उसे रिश्तों की सूची में कम कर दिया, पर उसने अपने दिल से मायके का पता कभी नहीं मिटाया और ना ही मिटा सकती है। कभी कोई पूछ ले बुआ अब मायके जाने का मन नहीं करता, तो मुस्कुरा देती है, क्योंकि कुछ घर छूट जाते हैं पर इंसान और उनकी यादें उनके भीतर से कभी नहीं निकल पाती। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। बातें थोड़ी सी दिल को छूने वाली हैं, खासकर उन बेटियों की, उन बुआओं की, उन दादियों की, लेकिन कार्यक्रम को इतना गमगीन नहीं बना सकते। बातें दिल को छुएं और गीत जो हैं वो आपको खुश कर जाएं, ऐसा ही गीत कार्यक्रम में आगे एंजॉय कीजिए। हाईवे फिल्म से पटाखा गुट्टी, और मैं बिल्कुल यहीं बैठी हूँ आपके साथ, फिर बातें करूँगी, हाल चाल बताऊँगी मायके का, बुआ का, दादियों का। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

शोध 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और दोस्तों कल है रक्षाबंधन का पावन पर्व, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हम पहले ही एडवांस में दे रहे हैं। और रक्षाबंधन से जुड़े हुए बहुत से एहसास, बहुत सी फीलिंग्स होती हैं जो कई दिनों से मेरे मन में उमड़ घुमड़ रही थी, और उन्हीं से संबंधित कुछ लाइनें, कुछ भाव मैं आप श्रोताओं के साथ साझा कर रही हूं। और ख़ासकर वो श्रोता या वो बहनें जो अब जिस मायके की बेटी हुआ करती थी, अब उस मायके में वो बुआ बन चुकी हैं या दादी बन चुकी हैं, उनका दुख कितना गहरा होता होगा ये आप ये लाइनें सुनकर समझ सकते हैं कि वो बेटी जो अब बुआ बन चुकी है या दादी बन चुकी है उसी घर की, कभी इस घर में उसका भी कमरा हुआ करता था, माँ के आंचल में उसका भी एक कोना हुआ करता था। बाबुल की आवाज़ पर दौड़ती थी जो नंगे पांव, उसी आंगन में छुपा था उसका पूरा बचपन और उसका पूरा गांव। फिर माँ चली गई, कुछ समय बाद बाबुल भी चले गए। मायका था तो वही, मगर मायके का अर्थ उसके लिए बदल गया था। भाई हैं अब भी, मगर भाई की अपनी गृहस्थी है। भाभियाँ भी प्यार लुटाती हैं, मगर उनकी भी अपनी व्यस्तताएं हैं। बच्चे हैं जिनके लिए बुआ सिर्फ एक रिश्ते का नाम है। कहाँ किसी को पता कि उसके लिए वही घर पूरा जहान है। अब बुआ जब मायके आती है तो मेहमान सी बनी बैठती है, दो घड़ी हंसती है, फिर जाने क्यों चुप हो जाती है। कोई कहता नहीं बुआ आज यहीं रुक जाओ, कोई पूछता नहीं कि दोबारा फिर कब आओगी। वो भी कहाँ अब किसी से अपना हक मांगती है, बस जाते जाते चौखट को एक बार मुड़ के देखती है। उसी चौखट पर शायद कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो, इसी इंतज़ार में वो अपनी सारी उम्र गुजारती है। श्रोताओ, उम्मीद है ये लाइनें आप तक, खासकर मेरी उन बहनों तक जो इस समय इस सिचुएशन में है, दिल को छू रही होंगी। और कई बार कुछ शब्द, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं। उस समय हमें कुछ कहना नहीं होता, किसी से कुछ सवाल जवाब नहीं करने होते। कहते हैं आंसू जो है ना, वो हमारे दिल का बहुत बड़ा दुख निकाल के ले जाते हैं। तो जब कोई चीज़ आपके दिल को छुए, जब लगे आपको कि आँखों में आंसू उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो उस वक्त उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें बह देना चाहिए, निकलने दो। उसके साथ साथ आपके दिल के कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसे भाव हैं जो बड़े दिनों से हमने दबा के रखे होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। और मैं बड़े दिनों से अपने बुआ होने पे खैर खुश भी होती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा ही महसूस होता है कि जब बुआ बनके उसी माँ बाप के घर में जाओ तो आपको ना वो माँ दिखती है, ना वो बाबूजी दिखते हैं। और वो बच्चे बुआ का वेलकम तो करते हैं, लेकिन उनके लिए बुआ अब उस घर की बेटी नहीं बल्कि एक मेहमान है। तो ऐसा ही कुछ महसूस होता है। चलिए बहुत ज़्यादा गंभीरता कार्यक्रम में नहीं लाते हैं, अब आपको खुश होने के लिए, थोड़ा सा थिरकाने के लिए कार्यक्रम में एक अगला प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब कार्यक्रम में वक्त हो ही रहा है और चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत इसी वादे के साथ कि आपसे फिर बहुत बहुत ही जल्द होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: पानी में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया।
3: जी बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: कहाँ से उठा कर लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में फंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में फंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: हाँ?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: Oh, no.
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
8: रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा, पराई औरत को तू काय को छेड़ता।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: पानी में भैया गई
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: अरे कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता में रहें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

ही है, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
9: oh, no.
10: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी।
11: रेडी?
10: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का ऑर्गन इंडिया की तरफ से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, ये चीजें हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी घर की महिला को किसी अंग की जरूरत होती है, किडनी या लिवर जैसे अंग की जरूरत होती है, तो जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही हिचकिचाते हैं उन्हें डोनेट करने में, और जब किसी मेल मेंबर को जरूरत होती है तो फीमेल्स नहीं हिचकिचाती है, मतलब घर की महिलाएं जो होती है वो हमेशा रेडी रहती है अपने अंग दान करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारी कहानी है वो इसी चीज पर बेस्ड है और आज की जो हमारे मेहमान है वो इस मिथ को बिल्कुल तोड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी डॉटर को बचाने के लिए अपनी एक किडनी अपनी डॉटर को डोनेट करी थी। चलिए तो हम आज इनसे बात करते हैं। इनका नाम है संजीव छाबरा, ये गुड़गांव के रहने वाले हैं। तो हम इनसे बात करके इनकी कहानी को जानते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे ये चीजें उनके लिए टफ बनी, कैसे उन्होंने डिसाइड किया, कितनी मुश्किल आई, कितना आसान रहा ये सफर, एंड अब चीजें कैसी हैं। तो संजीव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में।
3: गुड इवनिंग
2: संजीव जी। जैसा कि मैंने श्रोताओं को आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने अपनी यंगर डॉटर को अपनी किडनी डोनेट करी, तो आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे ये प्रॉब्लम चालू हुई आपकी यंगर डॉटर में और कितने साल की थी वो जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कितने साल तक उन्हें सफर करना पड़ा एंड उसके बाद ये किडनी का ऑपरेशन हुआ, आपने किडनी डोनेट करने का फैसला।
3: तो अगर मैं गेस करता हूँ तो शायद ये 10-11 साल की थी जब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लेकिन कोई डायग्नोस नहीं कर पाया। हम दिल्ली के टॉप चाइल्ड किडनी स्पेशलिस्ट के पास गए थे कुछ के पास, लेकिन शायद दो के पास नहीं गए जिन्होंने अल्टीमेटली 2000 से प्रॉब्लम बंद हो गई थी। जब डिटेक्ट हुई तो सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी कि हर महीने 2-3 दिन का 100-90 दिन का बुखार होता था, स्कूल मिस करना पड़ता था, तो हमने तो थोड़े और टेस्ट कराए, फिर एक डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, बट हम लगे रहे पीछे। अल्टीमेटली एक और डॉक्टर मिले और डायग्नोज हुआ, एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आज इस जमाने में होता है पेपर हमने US भेजे किसी जान पहचान के पास, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये रेयर केस है लेकिन 40% किडनी जा चुकी है, ऑटो इम्यून डिजीज है।
2: तो सिम्टम्स क्या थे उन्हें, सिर्फ फीवर आता था या कुछ और?
3: फीवर था लेकिन अल्टीमेटली जो आउटवर्ड सिम्टम्स थे फीवर के अलावा कुछ नहीं था। पहले UTI होता था लेकिन UTI बंद हो गया था, लेकिन UTI की लिटरेचर पढ़ते पढ़ते ही मैंने नहीं सुना था कि UTI किडनी से होता है। सब लोग सोचते UTI डर्टी टॉयलेट से होता है लेकिन किडनी से भी होता है, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई। तो देर से ही लेकिन पहले हम पीछे पड़े रहे किडनी का, वो हमें एक बड़े से

0: अस्पताल में साउथ दिल्ली में गए भी थे हम, काफी मतलब लर्नड डॉक्टर है इस चीज के, बट उन्हें कुछ नहीं है, मतलब जो देखा उनके सामने कुछ नहीं था। हमने 24 आवर यूरिन टेस्ट कराया, उसमें फाइनली पकड़ में आया, और एक और डॉक्टर ने फाइनली इनको पकड़ा और ट्रीट किया। शुरू में कीमो हुई थी, आई मीन कीमो इज नॉट ओनली फॉर कैंसर, मेनी अदर डिजीजेस।
1: जी बिल्कुल। सो जब ये पहले प्रॉब्लम शुरू हुई, और तब से जब डायग्नोस हुआ, वो कितना टाइम आपको लग गया इस सिर्फ डायग्नोसिस करने में, इस चीज का डायग्नोसिस होने में?
0: आप कह सकते हो कि इसको 6 साल लगे, अगर मैं गेस कर रहा हूँ।
1: 6 साल सिर्फ डिसीज डायग्नोस ही नहीं हो पाई, और अल्टीमेटली 40% किडनी डैमेज हो गई। और ये शुरू में डायग्नोस हो जाती तो बहुत चीजों को बचाया जा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: बट जैसा कि आपने बताया कि सिम्टम्स भी नहीं थे, तो फीवर को लेके अगर डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर सीजनल समझते हैं या फिर कुछ और। एंड यूटीआई इज वेरी कॉमन, आपने बिल्कुल सही कहा थे, यूटीआई लोग समझते हैं कि सिर्फ डर्टी टॉयलेट से होता है या नॉन हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से होता है, बट अल्टीमेटली इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो अभी हमेशा अपना डायग्नोस के साथ साथ डॉक्टर को जरूर चेक करवाया जाना चाहिए इन चीज़ों का।
0: हमने फिर हमने घर भी शिफ्ट किया, जिसमें मतलब ज्यादा फैसिलिटी थी, अलग से टॉयलेट के लिए था, तो वो सब भी किया, बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द कॉज।
1: जी छाबरा जी, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि जब ये प्रॉब्लम डायग्नोस हुई और जब डॉक्टर्स ने बोला कि 40% किडनी ही बची है, 60% डैमेज हो चुकी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आपको बताए गए, एंड ट्रांसप्लांट का डिसीजन कब आया?
0: 2016 में ये हुआ था, तब कहा था कि वील टेक इट एज वी सी इट, तब ट्रांसप्लांट की बात भी हुई थी। फिर तब तो सिर्फ 6 कीमो हुई, तो 6 महीने उसमें निकल गए, उसके बाद दवाइयों के बेसिस पे काफ़ी ठीक चलता रहा। फिर इसने हॉस्टल ज्वाइन किया, इस लड़की में भी हिम्मत है, मतलब इस बीमारी इसके जो हुई तो 10th के बोर्ड इसके कभी कभी हो चुके थे, और इसके 12th के बोर्ड में इसने एक सब्जेक्ट में टॉप भी किया CBSE। तो कॉलेज हॉस्टल जाने के बाद सडनली इसके कुछ सिम्टम्स फिर से बढ़ गए, वही बुखार और यूटीआई या वो चीज़ें, नौजिया वोजिया कुछ चीज़ें थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये शायद बढ़ गया है 2018 में। तो तब फिर सितंबर 2018 में फाइनली हम एम्स गए। एम्स में बहुत ही एक बढ़िया डॉक्टर है, मतलब इवन तो हमारी बच्ची पीडियाट्रिक से निकल चुकी, फिर भी उन्होंने स्पेशल केस में विदाउट एनी अप्रोच नथिंग, सिर्फ हमने उनको ईमेल किया था नेट पे देख के, उन्हें अलग से बुलाया, हमको इतना अच्छा समझाया, उन्होंने कहा था आप ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कीजिए 1-2 साल। फाइनली हमने प्री एम्प्टिव ट्रांसप्लांट किया था, विच इज मीन्स बिफोर डायलिसिस बिगिंस।
1: एंड उस केस में फिर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन आपके पास यही था कि फैमिली में से कोई डोनेट कर दे।
0: हाँ, तो उसमें मेरी वाइफ काफी ज्यादा मतलब ये डिटेल ओरिएंटेड है, तो वो ज़्यादा काफ़ी चीज़ों में घुसी, वो ज़्यादा उसने पढ़ाई करी हुई गूगल में, और उसने देखा कि जीन से भी होता है, ऑटोइम्यून का सोर्स क्या है, उसको अल्टीमेटली सब कुछ स्टडी करके एक ये थॉट आया कि हो सकता है कि किडनी डिफेक्ट हो जाए। बीच में मेरा किसी और फ्रेंड से बात कराई जिसने अपनी वाइफ को किडनी डोनेट की थी, विच वॉज अ थर्ड किडनी फॉर दैट हिज वाइफ इन 20 ईयर्स और समथिंग, मतलब एक किडनी 15 साल चली, एक 4 साल चली, ऐसे कुछ। तो ये दिमाग में था कि वन किडनी माइट नॉट
1: रिपीट हो सकती है ये चीज।
0: हाँ, वी डोंट नो, जिस बीमारी ने मेरी किडनी खाया हो वो नेक्स्ट किडनी को भी खा सकती है, खासकर क्योंकि सेम DNA है। तो फिर मैंने सबको चुप कराया, मैंने बोला आई एम दी ओल्डेस्ट इन द लाइन ऑफ डोनर्स, इट्स बेस्ट दैट आई डू, एंड आई वाज आल्सो एन एथलीट, माय हेल्थ आल्सो वाज द बेस्ट अमंग ऑल द पीपल ऑफरिंग द किडनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो
1: बट उस टाइम पर जब आपने डिसाइड किया, एंड देन कई बार बच्चे होते हैं जो नहीं इतना कष्ट देना चाहते अपने माँ बाप को, तो कई बार वो मना करते हैं, कभी कभी बच्चों के केस में माँ बाप बोलते हैं कि नहीं हम बच्चों से नहीं ले सकते, तो आपके केस में भी ऐसा कुछ था कि आपकी जो
0: डॉक्टर ऐसा कभी मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कभी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ।
1: मैंने आपके डॉक्टर का नाम नहीं पूछा, आप क्या बताने का, उनका नाम बताएंगे?
0: मेरी डॉक्टर का नाम है ईशिता,
1: ईशिता
0: उसको तो प्यार से हम इश्टी कहते हैं।
1: जी, कई बार होता है सर, जैसे आपने बोला कि आई एम द ओल्डेस्ट एंड आई एम फिट एंड फाइन एथलीट है, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके बावजूद भी कई बार जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, ये लोग इतनी नॉलेज नहीं होती, वो लोग कई तरह की बातें करते हैं, कई तरह का हमें नेगेटिव चीज़ें बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आपके केस में ऐसा कुछ होता किसी ने इस चीज़ को अपोज किया हो कि तुम मत दो या फिर ऐसा देना सही नहीं होगा?
0: नहीं, हमारे यहाँ तो उल्टा हुआ, किडनी देने के बाद बहुत से लोग मुझे सेलिब्रेट करते थे कि मैं बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है। मुझे तो 400 लोग, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या बड़ा काम किया।
1: यार माँ बाप करते हैं इसलिए, तो फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते इन चीज़ों को। तो अब जब किडनी डोनेशन हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो आपकी तबीयत और डॉटर इशिता की तबीयत कैसी है? आप वो कैसी हैं?
0: काफ़ी अच्छा है, फंक्शनिंग है। उसने अपना कॉलेज से डिग्री ख़त्म किया, बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट उसने सेफ्टी के कारण एक साल ड्रॉप किया। वी बोथ हैव सर्वाइव 2 ईयर्स ऑफ कोविड। सोचिए कि 2019 अक्टूबर 25 तो दिवाली के 2 दिन पहले हमारा सर्जरी हुआ, और नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के बाद कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया। हम दोनों ने उसको अच्छे भले भांति सर्वाइव किया है, बल्कि मैंने तो कोविड के हर महीने में 2020-21 ऑलमोस्ट हर महीने मैंने एक हाफ मैराथन दौड़ी है वर्चुअल, उस टाइम भी वर्चुअल होती
1: है। अबरा जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और वापस आकर नई जानकारी हासिल करेंगे आपसे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आँखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आँखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: बस आ गए। अब छोटे से ब्रेक के बाद हम बात कर रहे थे संजीव छाबड़ा जी से, जिन्होंने अपनी एक किडनी अपनी डॉटर को इश्ता को डोनेट करी और उनकी जान बचाई। छाबड़ा जी, ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि सर्जरी के थोड़े थोड़े महीनों बाद ही कोविड आ गया था, अभी आप दोनों बिल्कुल फिट हैं। तो आपको कोई स्पेशल मेडिसिन लेनी पड़ती है डोनेशन के बाद? बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि हम डोनेट करेंगे तो हमारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। तो अब आप अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो आप अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, अगर कुछ आपने फेस किया हो
1: तो। मुझे वैसे कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि अगेन जब ट्रांसप्लांट की डेट डिसाइड हो रही थी तो मैंने एक ही चीज पूछी। मैंने कहा बॉम्बे मैराथन के अभी जो है रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं, एक आध दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं नॉर्मली फुल मैराथन के लिए दौड़ता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट क्या मैं फुल मैराथन दौड़ सकता हूँ? लोग बोले क्या पागल आदमी है, यहाँ क्या ऑपरेशन की बात हो रही है? फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाद में मेरे दूसरे डॉक्टर ने बोला हाफ मैराथन दौड़ लेगी, मैंने हाफ मैराथन दौड़ी थी। बट खैर, तो अदरवाइज एक जो चीज़ मुझे नहीं मालूम थी कि किडनी डोनर के लिए जो ऑपरेशन इज लाइक सिजेरियन सेक्शन, बेबी निकालने के लिए एक कट होता है पेट में, तो दैट कैन लिटिल बट जो सिजेरियन के बाद वेट गेन का जो चांस है उसके लिए आपको प्रिकॉशन करनी चाहिए। तो बस वही प्रिकॉशन करनी होती है, थोड़ा सा डाइट में, थोड़ा सा एक्सरसाइज में, मतलब योगा करके वो स्टमक के मसल्स को ठीक ठाक करो। तो दैट वॉज दी ओनली प्रिकॉशन विच आई डिडंट वेयर, वाज इट अवेयर ऑफ, थोड़ा सा मतलब मेरा एक बड़ा, मैं उसको मतलब ऑलमोस्ट नेगेट कर चुका हूँ, लेकिन उससे मुझे फिटनेस में फर्क नहीं पड़ा। मैं दौड़ता वोड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। एंड
0: बाकी आपको किसी
1: डॉक्टर डॉक्टर हमारा कॉमन था, बेटी और मेरा, बेटी को तो सब प्रिकॉशन ने बता दिए कि ये सब वो सब, और खाने में ये प्रिकॉशन, और हर रोज इतने बजे ये दवाई। मैंने कहा मेरे लिए क्या है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, यू आर ए नॉर्मल पर्सन, जस्ट कम फॉर मंथली एनुअल रिव्यू, दैट इज ऑल। और मैंने कहा मैं ना स्ट्रीट डॉग्स को बहुत फीड करता हूँ, तो कोई इन्फेक्शन का डर, कहता आपको उतना ही इन्फेक्शन का डर है जो नॉर्मल आदमी को है। अब ये भूल जाइए कि आपकी एक किडनी दो किडनी, तो मैं वैसे ही जिया हूँ अपना, जो खाता था पहले मीठा अब नहीं खाता हूँ, तो अभी तक कहा नहीं। बट
0: अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं उस अपनी हेल्थ को लेकर एंड प्लस वेट गेन को लेकर।
1: ऑपरेशन हुआ था उस टाइम मैं प्री डायबिटिक था, मेरी हेरिडिटरी है, फादर उनके सारे भाई प्री डायबिटिक रह चुके थे, सभी कंट्रोल किया एक्सरसाइज और डाइट से, पर सबका था। तो मैं ऑलरेडी मेरा 5.9 HbA1c में मैं ऑपरेट हुआ हूँ, और तो 2019 में धीरे धीरे वो जो बढ़ता है 2022 में, क्योंकि मेरा एनुअल चेकअप होता है किडनी का, पूरा स्कैन होता है और सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, इसलिए मेरा डायबिटीज स्टार्टिंग में पकड़ में आ गया 2022 में, तो कंट्रोल में है। अगर मेरा एनुअल चेकअप नहीं होता बिकॉज ऑफ किडनी, तो जैसे बाकी लोगों का होता है 400-500 की शुगर के बाद पकड़ में आता है, तो आई एम स्टिल रनिंग, आई एम स्टिल एंजॉयिंग माय लाइफ।
0: एंड अगर बेटी की बात करें तो उनकी हेल्थ कैसी है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद?
1: शी इज हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, उसने पूरा एक साल ड्रॉप किया था उसने सर्जरी के लिए, वो भी मतलब ज्यादा प्रिकॉशन करते हैं ना पेरेंट्स। डॉक्टर ने कहा था ये आपने आपको ट्रांसप्लांट कर दिया आप नॉर्मल हो, पर फिर भी सबने प्रिकॉशन किया, तो एक साल उसका ड्रॉप किया कॉलेज में, बाकी उसने पूरे किए। अब वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसके कॉलेज का 1.5 साल तो कोविड में निकल गया, और लेकिन उसने आखिरी 3-3 महीने उसने हॉस्टल में निकाले। उसमें थोड़ी मेरी वाइफ को थोड़ा डर था कि फ्रेश फूड बहुत ज़रूरी है मेरी बेटी के लिए, तो मेरी वाइफ ने मेरी डॉटर के हॉस्टल के पास ही घर ले लिया और डेली फ्रेश फूड बना के उसको, मतलब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी उसको देती थी, मतलब फूड भेजती थी।
0: तो छाबड़ा जी, अगर हम लोगों को देखें हमारे समाज में ऐसी चीज़ों को लेके, अंगदान को लेकर या फिर किडनी डोनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली मैं तो अपना कुछ एग्जांपल एक दूंगा कि मैं शायद 31 साल का था, तो मेरे ऑफिस में एक लड़का था, उसका मोटा चश्मा था, मुझे मालूम पड़ा कि उसकी एक आंख है नहीं, पर मुझे उससे मिलने के 4-5 साल बाद मालूम पड़ा कि उसकी एक पत्थर की आंख है। बट दिस ही वाज नॉर्मल, ही वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बॉयज इन आवर ऑफिस, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एवर न्यू दैट ही डिडंट हैव वन आई। तो कुछ सालों के बाद, समझो कि 2014 4-5 के बाद के आसपास की बात है, तो मेरे फादर का एक आंख चली गई थी बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड मैक्रो डिजनरेशन। मैं डॉक्टर को पूछा था, तभी मेरा एक वो दोस्त है उसकी वो एक आंख से काम चला रहा था, मैं भी मेरी एक आंख जा सकती है पिताजी के साथ, तो कहते नहीं इनकी आंख नहीं, इनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, कोई नथिंग इज पॉसिबल। सो ऑलरेडी मेरे दिमाग का रास्ता तो क्लियर हो चुका था। एंड अगर कोई डाउट भी होता है तो मैंने एक्चुअली एक फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ किडनी डोनर्स, देखो बात करते करते फेसबुक पे जो भी है मतलब किडनी लाइफ किडनी डोनर इसमें ज्यादा यूएस के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अल्ट्रुइस्टिक डोनर है, मतलब कोई मतलब अपने फैमिली मेंबर को नहीं दे रहे हैं, और बहुत से नॉन डाइटेड डोनर्स भी हैं जो मतलब आज उन्होंने किसी और को दिया और एक साल बाद उनके फैमिली मेंबर को मिलेगा। तो सब एकदम मस्त हैं, बल्कि अभी तो शायद इस महीने या अगले महीने तो पर्थ में ट्रांसप्लांट गेम्स भी है, मैं जाना चाह रहा था, जा नहीं पाया।
0: बिल्कुल
1: अगली बार जाऊंगा, ओलंपिक्स होती है ट्रांसप्लांट की।
0: बिल्कुल आप भी जा सकते हैं, इवन आपकी डॉटर भी पार्टिसिपेट कर सकती है उसमें। नेक्स्ट टाइम 2025 में जर्मनी होने वाले हैं।
1: बहुत बढ़िया
0: जी। सो संजय जी, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने शो को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे।
1: ओके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस अंतराल के बाद और हम बात कर रहे हैं छावरा जी से, जिन्होंने अपनी किडनी अपनी डॉटर को डोनेट करी थी। ब्रेक में जाने से पहले हमने कई सतहों के बारे में जाना और डोनेशन की, कैसे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, डायग्नोज करनी है इन दवाओं। तो आइए हम इस चर्चा को जारी रखते हैं और उनसे नई जानकारी हासिल करते हैं। छावरा जी, हमारे देश में अंगदान की जो दर है वो बहुत कम है और जो जितने अंग प्रत्यारोपण हमारे देश में होते हैं उनमें से ज्यादातर अंग प्रत्यारोपण उन लोगों के होते हैं जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी एक किडनी या फिर लिवर का कुछ भाग डोनेट किया है। बट डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन मतलब मृत्यु के बाद अंगदान को लेकर बहुत कम जागरूकता हमारे देश में है और हमारे देश में इतने लोगों की मृत्यु तो होती है, ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, करीब 1.5 लाख लोग हर साल मृत्यु का शिकार होते हैं सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन उनके ऑर्गन डोनेट नहीं किए जाते क्योंकि जागरूकता की बहुत कमी है। तो आपने तो अपनी डॉटर को डोनेट किया है, लेकिन आप इस डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम को मतलब मृत्यु के बाद अंगदान को कैसे किस तरह से देखते हैं, और अगर हमारे देश में भ्रांतियों को देखें अगर इस तरह से, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अंगदान के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान के ऊपर जागरूकता बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान के लिए सामने आए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे देश में जिनकी फैमिली में कोई डोनर अवेलेबल ही नहीं है या फिर कोई मैच नहीं हो रहा फैमिली मेम्बर का ब्लड ग्रुप या फिर ऑर्गन, तो उनके पास सिर्फ एक ही सहारा है कि मृत्यु के बाद जो लोग अपने अंगदान करें वो अंगोडेबल है।
2: इस मामले में तो एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल में एक है, मेरे से मेरे कॉलेज का एक जूनियर है कभी जैन, जब उसके फादर की डेथ हुई थी आज से 10-12 साल पहले, तो हम उसके घर गए उसी दिन। कब है कहते लोग क्यों कहते हिज बॉडी हैज बीन डोनेटेड टू एम्स एंड विद इन आवर्स ऑल दी डिफरेंट जो आईज के डोनेशन लेने वाले हैं वगैरह वगैरह वो पहले आ जाते हैं। फाउंडेशन कॉल फ्लैट गिव लाइफ आफ्टर डेथ, थोड़ा बिजी रहता है वो फाउंडेशन स्टार्ट करता है फिर कर नहीं पाता या कर चुका है तो वो झटके में चलते लगे, बट ऑलमोस्ट हमारे फ्रेंड सर्कल में सब उसी के पास अप्रोच करते हैं जब किसी के मतलब फैमिली मेम्बर की डेथ होती है। अगर उसकी फैमिली मेम्बर की मर्जी हो या नियरेस्ट की मर्जी हो तो हम उसको बोलते हैं कि हमारी हेल्प करते हैं, हम भी चाहते हैं। और हम सब लोगों ने तो उसको बोल रखा है कि हम लोग पेपर वर्क में वीक हैं लेकिन हमारा भी कर देना अभी। वो सब बस वेरी वीक इन यू नो एक्चुअली अप्लाइंग फॉर ऑर्गन डोनेशन, दैट इज माई प्रॉब्लम आल्सो। मैंने भी सिर्फ लाइसेंस भरने के टाइम में अप्लाई किया हुआ
1: जी। तो आपने लाइसेंस की बात करी थी, ये मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूँगा कि आजकल ऑर्गन डोनेशन के ऊपर आपकी जो सहमति है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के टाइम पर भी पूछी जाती है। जब भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरते हैं या फिर रिन्यूअल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में क्या आप अपने अंगदान करना चाहेंगे। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से एक अनुरोध है कि आप प्लीज़ उसे यस ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है आपका डोनेशन हो ही जाएगा, लेकिन आप अपनी इच्छा तो जाहिर कर ही सकते हैं और आपकी एक हाँ से एक इच्छा से करीब 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। एक इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो अपने सिर्फ किडनी ही नहीं 8 ऑर्गन्स ऐसे डोनेट कर सकता है जिनसे 8 अलग अलग लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये पूरे परिवार की जान बचती है जब किसी एक इंसान की जान बचाई जाती है अंगदान से, तो एक्चुअली उसके पूरे परिवार की जान बचती है। बिकॉज आपने कभी अगर देखा हो किसी पेशेंट को जो डायलिसिस पर है तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ वो पेशेंट ही सफ़र नहीं कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। हर रोज़ आना जाना हॉस्पिटल में, अपने स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस से छुट्टी लेना, देन उस पीड़ा को सहना, ऑफिस मतलब इलाज के खर्चे, इन सब चीज़ों से फैमिली पूरी टूट जाती है। तो जब एक इंसान की जान बचती है तो उसके पूरे परिवार की जान बचती है। एंड ट्रांसप्लांट आपकी पूरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, बस आपको कुछ मेडिसिन कुछ चीज़ों का परहेज रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आप किसी से भी कम नहीं हो, आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, वजन उठा सकते हो। जैसा सर का एग्जांपल देखें तो सर आज भी अपनी रनिंग करते हैं, उन्होंने अपनी एक किडनी दे दी है और लोग ये भी मानते हैं कि मैंने अगर अपनी एक किडनी दे दी तो मुझमें कमी आ जाएगी, मुझमें कमज़ोरी आ जाएगी, मुझे बच के रहना पड़ेगा। तो सब कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरह से नॉर्मल हो, आप हर वो काम कर सकते हो जो एक नॉर्मल इंसान करता है।
2: मैं एक और छोटा सा ऑर्गन डोनेशन भी बता सकता हूँ आपको, जो कि ये लाइफ सेविंग नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है, बट इट इज एस्टीम स्टडी जो हम मुझे एक्चुअली मिलन सोमन ने बताया था, मैंने एक बार किया है, इट इज हेयर डोनेशन. तो आई वेंट फॉर दैट. इट्स माइट साउंड लिटिल बिट फ्रिवोलस ऑन द फेस ऑफ इट, बट मैंने बाल अपने काफी लंबे अस्त किए थे, काफी मतलब मेरा अच्छा सा पर्सनैलिटी हो गई थी लोगों बीच में. तो जब मैंने पढ़ा कि आप अगर अपने बाल डोनेट कीजिए तो कैंसर पेशेंट्स के लिए विक बदली हुई, कैंसर पेशेंट्स कैन नॉट टेक केमिकल विक्स जो आर्टिफिशियल होते हैं, तो उसमें मुझको 3 महीने लग गए जब विलन सोमन ने कैंपेन चलाया था और एक्चुअली मतलब ये डोनेट करने में, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम बनी हुई थी मेरे बालों के बालों से. मैंने सोचा मैं तो आदमी हूँ, जो औरतें हैं जिनके लिए बाल बहुत बड़ा पार्ट है सेल्फ एस्टीम का और उनकी कीमो होती है, उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये. एंड इफ दे फॉर सम मेडिकल रीजन कैन नॉट टेक एन आर्टिफिशियल विक, तो दैट मेड मी. उस टाइम मेरे इतने लंबे बाल नहीं थे कि मैं चोटी से काट के डोनेट कर दूं, मुझे पूरा एक गंजा होना पड़ा. मैं एक साल गंजा रहा पूरे कोविड में. सो दैट समबडी आस्क्ड मी आई कैन टेल द स्टोरी.
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कीमो चलती है तो बालों को नुकसान होता है और हमें बाल देने पड़ते हैं, और जो फीमेल्स हैं उनका तो सबसे बड़ा गहना माना जाता है उनके जो केश हैं, बाल हैं. और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कॉन्फिडेंस जो एक लाइफ को जीने का एक अंदाज है वो बदल जाता है. जब तो आपके बाल नहीं रहते, आप दुनिया के सामने से जाने से कतराते हैं, तो ऐसे लोगों की इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है. तो उनको कॉन्फिडेंस वापस मिलता है दुनिया के सामने जाने का, अपनी बीमारी के रहते हुए अपने नॉर्मल जो डेली रूटीन के काम है, अपनी अर्निंग्स है, अपने ऑफिस है, अपने कॉलेज स्कूल जो भी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. बोलने में बहुत आसान लगती हैं लेकिन ऑब्वियसली करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए बहुत मैटर करता है और उनकी पूरी लाइफ पूरा दिन उस बात से चेंज हो सकता है. जी बिल्कुल, हेयर डोनेशन एक चीज़ है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन एसेंशियल है लेकिन स्टिल वो बहुत इम्पैक्टफुल रहती हैं किसी की लाइफ में. साबरा जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताएं. एंड श्रोताओं से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे छाबरा जी ने किसी की जान बचाई और हमेशा वो ये ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक बनाया जाए किसी न किसी
2: तरह से.
1: मैंने आपकी इसलिए एज नहीं पूछी क्योंकि जनरली एज पूछना मुझे ऑड सा लगता है, लेकिन मैं किसी की भी एज नहीं पूछता.
2: नहीं नहीं, डोनेशन में ये वाला पॉइंट भी आता है ना.
1: यस बिल्कुल बिल्कुल. कई लोग सोचते हैं कि मेरी एज ज्यादा इसलिए, जी कई लोग सोचते हैं कि मेरी एज ज्यादा है इसलिए मैं डोनेट नहीं कर सकता, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती. आप कितने ही बुजुर्ग हैं या आप कितने ही यंग हैं, लेकिन अगर आपका जो डोनेट आप जो पार्ट कर रहे हैं, जो ऑर्गन कर रहे हैं वो हेल्दी है, तो आप बिल्कुल डोनर बन सकते हैं. एज मैटर नहीं करती, उस ऑर्गन की हेल्थ मैटर करती है.
2: यहाँ तक कि एक थे, मैंने मेदांता से कराया तो वहाँ सुना था मैंने, एक ओवरवेट थे तो उनको क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछ के बेरियाट्रिक सर्जरी कर ली. बेरियाट्रिक के थ्रू अपना वेट कम कराया और फिर किडनी डोनेट कर. दैट मीन्स बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी आप किडनी डोनेट कर सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल. इवन मैं भी एक पर्सन को जानता हूँ, सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे वो, श्री तेजराम जी, उन्होंने 88 ईयर्स की एज में अपनी किडनी, अपना हार्ट और लिवर डोनेट किया था. ऑलमोस्ट 90 ईयर्स उनकी एज हो गई थी, 88 क्रॉस हो गए थे. तो एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, मैटर सिर्फ उस ऑर्गन की हेल्प करती है जो आप डोनेट करने जा रहे हैं. चलिए छाबरा जी, हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं और अपने श्रोताओं से भी हम विदा लेते हैं. अगले एपिसोड में हम किसी और हस्ती के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे और नई चर्चा हम जारी करेंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे.
2: थैंक यू सो मच. ओके,
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच.
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं. आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120364 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120364 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में एक टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में NDRF की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की।

0: गिलास पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में फंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में फंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तू मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो।
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

291 एफएम मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंगटोन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे।
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो,
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ए तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक श्रोताओं कर देन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

सारेंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक आशोताओं बढ़ देना कार्यक्रम जग गए इन्हें सुन देनी कोर प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला तीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारेयां ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ देने कार्यक्रम चल गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो शो तो बढ़ दिन कार्यक्रम च आगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक ता शो तो बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारियां ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 MHz पर ए तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहाँ श्रोताओ अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गु

0: पानी में भैया
1: गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता में रहें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षा बंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: जी खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
1: पापा जी ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति।
2: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
3: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
1: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे।
3: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: अच्छा मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो,
9: इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
3: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
10: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: पहली गेंद बॉल हवा में और
1: गई भैंस पानी में भैया
0: गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
1: कहां से उठा कर लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो।
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला। ये तो है ट्यून कर रो बुना हा बड़ी देर रहा कि अब जो करो आ बहुत सारे श्रोता कि ऐसा बहुत देर रहा पहले वह कि ऐसा ट्यून कर रो बुना और कुछ एक श्रोता जो इंतजार रहा चूर बजने पर तो तीन चूर बजे कि ऐसा करो बुना हा तो जी इंतजार खत्म हुआ है और आऊँ कार्यक्रम तुंद अपना मंद पसंद कार्यक्रम मंद पसीदा कार्यक्रम ठेठ गद्दी वालों का मंद पसीदा कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ हाजिर बुआ हा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा। ठीक बुणेन उम्मीद आ और चलिए जिंदगी श्रोतों माड़े मोटे दुख बीमारी माड़ी मोटी तकलीफ किया सो द लाइफ में चल रही बुंदे या श्रोतों है ना उतार चढ़ाव इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ नहीं तो चलना ही महसूस होगी। बस भगवान वाजी खुशी रखा सभी हो चलते फिरते रखा सभी हो और हल्की फल्की दुख बीमारी चलो पार्ट ऑफ लाइफ चली रहन था इतनी करी चली रहन कि जितना कर इंसान जरी सका और कर सका और निभाई सका श्रोतों मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम सचिन कपूर हा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ तो सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं श्रोताओं 7081 8179 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ तू होगी शेयर करनो हा 7081 8179 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो हो सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी क्या सो साझा कर सकते हैं। यह गलर खास ख्याल रहे श्रोतों की जानकारी की सो साझा करने लायक जरूर हुआ लेकिन श्रोतों मुसीबत की सो कहने भी कस भी शहर में किया सो अचानक इज सकते हा। जी हाँ श्रोतों नेपाल में चले आए है ना नेपाल में बाढ़ कस तरीके की आया श्रोतों हेरा हजारों मनु के सैकड़ों मनु बोले सकते हैं कि लापता इन श्रोतों और लगभग 100 मनु के तैयारी ला सके न सो मूली इन श्रोतों। तिब्बत क्षेत्र में ग्लेशियर झील फटने थों किया सो श्रोतों नदी में अचानक तबाही चली आई और तबाही रे रास्ते में इने वाले गांव पुल सड़क उजड़ी गए मनु रे घर उजड़ी गए मनु रे आशियाने उजड़े गए और लगभग 100 मनु किया सो भी उजड़े गो सो तो ज़्यादा ही बुझ सकता श्रोतों आंकड़ा शायद घट हुआ लेकिन सो तो ज़्यादा ही बुझी सकता हा। तो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो ये सब हूँ करते हैं आर जे सचिन कपूर सोगे और आइया लेकर ही चलते हैं श्रोतों तो सब भी जो कार्यक्रम मंच आगाज तू वो पता कार्यक्रम रहा आगाज किया सो बेहद ज़रूरी है और हमेशा है कार्यक्रम रहा आगाज के सुकर दिन कुछ एक जानकारी था बात ता आइए जी कार्यक्रम रहा आगाज कर लें दिन और आगाज तो बाद फिर इनके जितने भी श्रोता तैयारी फरमाइशा पूरी कर ले और कुछ एक और खास जानकारी के ना सो तो सो गी शेयर कर ले साझा कर ले

শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো সবই টিউন করো আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা জ্ঞান সো চল রহি শতো তা বহুত বহুত স্বাগত হ্যাঁ মোটা মোটা স্বাগত হ্যাঁ ফিরে আকমো কে সবই হুড়নে আলে রা সবই শ্রোতাগণ রা তা বিলকুল বহুত প্যারে দিয়া গীত কে হ্যাঁ সবই রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা মা হুণো হ্যাঁ শতো আর অন্য জানকারী কেন সবই আপনি শ্রোতা হোক সু জরুর शेयर करनी न साझा करनी ही तो सब श्रोता जुड़ी सकते हैं जी असोगी 7018817091 पर कॉल करे करे नंबर हक मौके फिर आऊँ शेयर करनू तुस हो गए 7018817091 पर तो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए जी इन जितने भी श्रोता असोगी बन रहे हैं जुड़ रहे हैं त्यार रकमों के फिर यह स्वागत कर लें दिन और अजय की तो सब श्रोता जान देन किया है फेसबुक रे माध्यम तो भी किया सो लाइव इंदे रेंदे हिन और वीडियो के सो बंदे रेंदे ना है कुछ एक खास जानकारी के ना ठेरी वीडियो है ज़रूर तो सो तक साझा कर देने कोशिश रन दिया कि अपनी बोली माँ है ज़रूर वीडियो के ना सो तुसु तक रह पहुँचान छोतों और अय्या कार्यक्रम जो आगू बढ़न दे हिन छोतों और स्मार्ट सिटी धर्मशाला में श्रोतों शीला चौंक रे सोगी लगदे पुला वार आऊँ बोले सकता है करीब 1 करोड़ रुपये री इलेक्ट्रिकल बस किया सो खराब हो चुके श्रोतों बिच सड़क में किया सो तकनीकी खराबी रे कारण किया सो खड़े गए श्रोतों बस रे अचानक खराब होने थे सड़क पर गया सो आवाजाही प्रभावित हुई नेचुरल दे गाला सो भोने थी और सो तो भेगा वक्त थो तो भेगा समय के सो सफ़र जो यात्री करू करते थे तीनों परेशानी रे सामना किया सो करना पे सो तो

0: बस में सवार यात्री जो मजबूरन की असो बीच रास्ते में उतरना पे और अगूर सफर की असो पूरा करने ताई निजी बस सवा सहारा की असो लीना पे उसो तो इतों कार्यालय गुचूरे जो अपने अपने दफ्तर चल रहे थे कॉलेज चल रहे थे और अन्य ज़रूरी कम्मा जो निकलना लग रही थी मन उसो तो खास कम्मा वो सब बैगा बैगा उठ के रेगन दें तीनों काफ़ी दिक्कत रहा सामना किया सो तो सो करना पे आंतुसो दसना चंदा श्रोतो आठ वर्ष पहले ही परिवहन निगम वे बड़े बेड़े में ये शामिल हुई हैं है ना करीबन करीबन एक वर्ष पहले ही और जति में अतिरिक्त 17 और बस सके ना सो मोड़ी हिन टीपू जो ता 18 करोड़ रुपये भी धर्म 18 करोड़ रुपये भी बस सके सो धर्मशाला डिपू जो मूल रही थी श्रोतो जिला मुख्यालय धर्मशाला डिपू वे आरएम साहिल कपूर है दस वर्षों तो हों कि बस में तकनीकी समस्या छोड़े थी सूचना मूलद ही कारीगर के ने सो मदद वास्ते पूजे और समस्या व जल्द समाधान करो और बस जो दोबारा गया सो चलने योग्य किया सो बनाई दिता शतो ये जानकारी थी जो है तुसो तक पहुंचाई है अन्य जानकारी तुसो गया सो साझा करते रहने पहुँचाते रहने बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सु हेरदे न त्यारे और इसी सो की श्रोतो मैसेज भी किया सोआ और कॉल भी आया चलिए मैसेज तो यसु खबर आ रही है खबर बाद में पढ़ देन पहले इंदे श्रोता जो कि यसु कनेक्ट कर देन तुसु सो की श्रोतो उस दिन कौन बल्लू देन और कड़ी था बल्लू कर देन और क्या यारी फरमाइश किया सो रहने वाले हा नमस्ते जी
1: नमस्ते जी और ठीक ठाक है हाँ जी हाँ जी ये तपो बनते वेद राम हाँ वेद राम जी जतनी है नेपाल की हुई है घटना तो बहुत बुरी हो है क्योंकि इंसान तो कुछ भी देश का वहां है तो इंसान बुरी घर से बेघर हुई है कुछ हाँ जी हाँ जी चलो क्या कर सकते इंसान हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये तो कुदरत की मार है ना इसमें हाँ जी ये तो सुनाई जा अजय ब्रह्मौरी ये सुनाई नहीं कोई गीत हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 MHz পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হে সবি টিউন কর রো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি কা পাগে না সো বিলকুল লাইভ চল রহিন আই এ কার্যক্রম কো কার্যক্রম জো কি এসো আগু বড়ন্তে না অর ইন্দে শ্রোতাগণ আস হো কি বিলকুল জুড়না চাহন্দা হে না হ্যায় কানেক্ট কর দেন সি তো সো 708 8 1 1 709 1 পর নম্বর আক মোকে ফিরে আউ শেয়ার করনো হ্যাঁ 708 8 1 1 709 1 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम जो है बढ़ते हैं श्रोता मणि महेश यात्रा में 2026 बुधवार जो आधिकारिक तौर पर किया सो आगाज बुच्छू रहा श्रोतों बुधवार जो किया सो करीब 253 श्रद्धालु मणि महेश अरे पवित्र डल में डुबकी लगाने वे वास्ते किया सो मुख्यालय थो रवाना बुच्छूरे थी श्रोतों उपमंडलीय प्रशासन री औरतों की ऐसो बुधवार जो श्रद्धालु जो मणिमहेश यात्रा रे विभिन्न पड़ावा पर स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं भी क्या सो उपलब्ध करवाई कर देती हैं। उल्लेखनीय आश्रतों की इस बारी मणिमहेश यात्रा 2026 आधिकारिक तौर पर आयोजन 25 अगस्त थो 20 सितंबर तक भूणा हाँ बुछूरा हा मतलब है ना जी। और पिछले बोज बरख वे कारण के सो यात्रा रे पैदल मार्ग री हालत खराब होने वे चलते श्रद्धालु जो हर शर्तों हगू के सोना गाने दिता शर्तों तेरे गाने भी इजाजत किया सोना मुड़े मंगलवार संजा किया शर्तों सो पैदल यात्री मार्ग री हालत ठीक होने वे बाद किया सो बेगचूर बजाय यात्रा अपनी तिया आधिकारिक तौर पर कि सो आगाज करी दिता श्रोतों कार्यक्रम में जानकारी रा सिलसिला ये चलते रहना हा श्रोतों तो सब बन रहे समय आरजे सचिन कपूर सो और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव होनु कर दें जनाब अपने अपने वीडियो सेट में वीडियो गुंजन धर्म शाला मंच ताइए जी कार्यक्रम ताइए चलते रहना जानकारी रा पिटारा भी यहीं खुलते रहना हा श्रोतों 708 8 1 1 709 1 पर नंबर अग मौके फिर हूँ शेयर करनो हाँ 708 8 1 1 709 1 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोतों सो होने सकते हैं। चलिए तो है चल दिन थोड़ी करी और हगो और इन दगले श्रोता आस होगी कनेक्टिव हैं पुस दिन कुंड बल्लू दिन और कड़ी थम बल्लू कर दे हैं। नमस्ते जी हेलो हेलो नमस्कार जी आवाज ही चुंदिया हेलो हेलो माफ करो जी तुसो डिसकनेक्ट करना पैना क्यों कि तुंदे आवाज़ की सो ना आए इंदी है सो अगर ना ना आए पुछते तो अगर अगले शो तक कनेक्ट बोल लेता है जरूर तुसो कनेक्ट कर ले शो फिलहाल गीत मुझे बड़ा याद इच्छु करता हा शो तो हाँ इस गीता जो तुसो तक जरूर पहुँचाना चाहता हा हालांकि करोगे हाँ श्रोतों इस गीत का आनंद किया सो तो है सब जरूर लिया और ये गीत बहुत ही प्यारे दे गीत है श्रोतों ये गीत तो सुतक रस पहुँचाना हाँ लेकिन इन श्रोता क्या करो करते हैं कभी कनेक्ट बजे छुगरते कभी ना छुगरते हैं फिलहाल कनेक्ट ही तो फिर कनेक्ट के अंत बच गए हैं लेकिन चलिए है जल्द ही थोड़ी करी और हगूँ और अपने सभी श्रोता जो कि है श्रोतो सो ले करी चलते हैं इस गीता रे किनारे बने रहे जुड़ी रहे रेडियो गुंजन वे गूंज सोगी और आसो तुसो सोगी।

0: वाकई मैं नशो तो ऐसा मुकदर रखेल बुंदा हा और लगन भी बनूरे बुंदे मालिक है, ये भी बड़ी सत्य गल है। और दूसरी सत्य गल है कि मुकदर रखेल के असो बड़ा बुंदा हा शो तो मुकदर तुंदा कड़ी ने साथ दिंदा कड़ी ने साथ ना दिंदा, ये चीज़ा बड़ी मायने रख दी इन शो तो। और बलदे ना कि बेगर भुलरा कोई संजा घर हो चली है तो तस्वीर भूल रहा ना बल दहन। इंसान अक्सर अमूमन क्या बहुत सारी गलती अपने जीवन में करता है श्रोताओं, और तिनिया गलती रा पश्चाताप अगर इंसान कर ही लिया श्रोताओं सो तसो सुलझा हुआ व्यक्ति की आसो कहलंदा है श्रोताओं। और ये जीवन यापन करना है धरती मन श्रोताओं तो अमूमन यह अपनी गलती थों किया सो सुधार कर देन, अपनी गलती थों किया सो सुधर नहीं रहा है कोशिश कर देन। प्रत्येक व्यक्ति यह करता है श्रोतों, है ना, किया है कोई गलती करूरी बहुत अत्यती हुआ है बेहतरीन बनाने की कोशिश किया सो अमूमन कर देन, जाए सो इन पर्सनल लाइफ हुआ जाए इन सो प्रोफेशनल लाइफ हुआ। तो ये बड़ा बढ़िया ही ना सबक बुंदा असु सभी वास्ते कि इंसान गलती थों सीखता बया और अगर पश्चाताप करता है गलती रहा गलती जो एनालाइज करता है तो सो इंसान बेहतर है। बहरहाल इन अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, ठीक ठाक है ना?
0: हाँ जी वो कगच्छा जी, मुझे ना थोड़ी आवाज़ नहीं आंदी तुंदे।
1: अच्छा आवाज नहीं तो कर दी।
0: हाँ जी तुंदी किनारियों तो ठीक मुने। अच्छा जी अबे अबे चुंदे जी कौन बल्लूं देन और कड़ी थों बल्लूं देन?
1: पलनी हो बल्लू कर देन।
0: अच्छा जी पलनी हो कौन बल्लूं देन जी?
1: रचना बल्लू कर दी है।
0: क्या नाम दसो जी अपना?
1: रचना।
0: हाँ जी रचना जी ठीक ठाक ना?
1: हाँ जी तो सब ठीक ठाक।
0: हाँ जी है भी ठीक ने कर लग रहे रचना जी
1: कर लगना बर जी जरा।
0: हाँ बरका था तू सो बताया अबे मुझे तो बरसाला मुके को अबे ना जी
1: ये परे पलनी है।
0: हाँ जी
1: बनो पलनी नहीं बर।
0: अच्छा अच्छा पलनी बर खाने मुक दिया जी। चलिए पलनी बड़ी अच्छी जगह बड़ी सुंदर जगह बड़ी प्यारी जगह बड़ी उच्ची जगह भी है और बड़ी प्यारी जगह भी है। तो पलिनी थो गुंडे ने गीत हुनना पसंद कर ले जी तो है
1: मेरी पोते सुनाया ना ले।
0: अच्छा जी
2: हेलो।
0: हां जी
2: नमस्ते।
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ने?
2: हां जी।
0: अच्छा जी क्या नाम तुंदा प्यारा दिया? स्वाति जी कुंडिनी क्लास में पढ़ दें तो है?
2: थर्ड
0: क्लास में। अच्छा कस स्कूल में पढ़ दें स्वाति जी?
2: हाँ जी।
0: कस स्कूल में पढ़ दें तो है?
2: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय।
0: अच्छा क्या बात है क्या बात है। ता मजे इंदा पढ़ने रहा?
2: हाँ जी।
0: अच्छा स्वाति जी तुसो कोई पोएम इंदे या?
2: हाँ जी।
0: चला हूँ आए दे जितने भी इस समय तुस वो हजारों लक्ष्य होता हूँ कर दें दिन बढ़िया दे प्यारी दे कोई पोएम होना ही दिया। हेलो अच्छा हूँ आए दे जी जो भी हिंदे तुस
2: सीखो फूलो सैनिक हंसना सीखो बोरो सैनिक गाना तरु की झुकी डाली सीखो शीश दीपक से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना और पृथ्वी से सीखो जितना हो सके अंधेरा हम।
0: क्या बात है क्या बात है इतनी खूबसूरत पोइम तो है याद भी कर रहे हो तो सुनते भी है क्या बात है। स्वाति जी कौन देना गीत होना पसंद कर ले तो है?
2: तेरा मेरा लगन।
0: तेरा मेरा लगन अच्छा लगता है गीत है?
2: हाँ जी।
0: अच्छा ठीक है स्वाति जी जरूर तुम्हारी फरमाइश है पूरी कर ले।
2: ठीक
0: ठीक है जी, धन्यवाद। एंड अगले, वेलकम जी, वेलकम वेलकम स्वाति जी, वेलकम इन द अगले श्रोता हंसुओगे कनेक्ट पूछ गया हिन। नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी, नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, ठीक ठाक न राजीव बाजी?
3: बढ़िया जी, बढ़िया
0: जी। कौन बलून देना और कड़ी थम बलून देना?
3: हाँ बलूंदा स्लेट ग्राम हूँ, अमित कुमार।
0: क्या बात है, ये बड़ा बढ़िया तार के सो जुड़ी को पहले पलिनी थो कॉल आया फिर पलिनी थो बात से दस लेट गदाम थो है। क्या बात
3: है, पूरा सेल्समैन।
0: हाँ जी, हाँ जी,
3: पूरा सेल्समैन अमित कुमार।
0: अच्छा अच्छा क्या बात है, क्या बात है। इस समय तो है डीपू मंच ने कार्यरत या फिर अपने घर थो बल्लूगढ़ देन?
3: चलिए
0: ठीक है जी, जरूर तुसुए गीत होना ले है ना जी।
3: बिल्कुल जी, बिल्कुल,
0: धन्यवाद जी,
3: धन्यवाद।
0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वह वेड़ी गुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगैन सो चल रही हैं। और तो सब श्रोता की जुड़ी सकते हैं, नंबर है 10 तो 7 0 8 8 7 0 9 8 पर। चलिए जी, इनकी फरमाइशा चली आई हैं, यह फरमाइशा जो पूरी करते हैं श्रोतों और अक मौके फिर ही तू सभी श्रोता जो कि असो बखूबी दसना चाहता हाँ कि 20 सितंबर तक की असो यात्रा चलने हैं मणिमहेश रे। मणिमहेश यात्रा 2026 रा जो आशतों सो जिया है दसो कि बुधवार जो आधिकारिक तौर पर की असो आगाज बुच छूरा हाशतों और करीबन 253 श्रद्धालु मणिमहेश पवित्र डल में डुबकी किया सो लगाने वे लगाई चुक रहे लगाने वास्ते के सो रवाना हो चुके हैं और हबजू तक के सो लगाए भी बैठे बूने हैं शतों। तो 20 सितंबर तक चलने है यात्रा जी, जरूर इस यात्रा अंदर तो है बेगान। तो सब फोन कर देने इस समय आरजे सचिन कपूर जो वेड़ी गुंजन धर्मशाला में बिल्कुल लाइव और आइया थोड़े घर आगू चल दें शतों और कार्यक्रम मंच जी की तो है सब बाखूबी जान दहिन की बहुत सारी जानकारी गेन सो तुसु तक रहा है पहुँचाने रे भरपूर कोशिश किया सो जरूर कर दहिन श्रोताओं और इसी सो के श्रोताओं अन्य जानकारी गेन सो आसू पहुँचानी पहुँचानी तुसु तक श्रोता है ना जाए सो। लेकिन अगल है श्रोताओं, बरसात चल रही थी और बरसात में गए सो काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया श्रोताओं से हुआ है, बहुत अत्यधिक नुकसान की सुबह और हर मौके के सो एक गाइडलाइंस असू सरकारी और तो हमेशा हिंदी हिंदी है कि तो सब श्रोता के सो ज़रूर ऐसी जगह नगान जड़ी लैंडस्लाइड की सो बूंदे वो ऐसी जगह के सो बिल्कुल नगान ऐसी जगह नगान जड़ी की क्या बोलते रुख बुख जो रुख बूंदे तिया लुड़ने रखे आसो डर भुआ है ना। तो इं जगह थो किया श्रोताओं सो परहेज किया आसो जरूर करने तो है श्रोता यह गलारा विशेष ध्यान किया सो जरूर रखना श्रोताओं की ऐसी वैसी जगह के सो हल्ली भी नगान और दोपहिया वाहन बो जाए चोर पहिया वाहन बो श्रोताओं इतियो की असो बिल्कुल आराम सो की चलान और आरामदायक की असो निकालना श्रोतों ताकि तो है भी सुरक्षित रहन जो तू सुसो की सड़का मन चल रहे सो भी सुरक्षित रहन और सो की तुंदे परिवार वाले जो तुंदी राह तक्कू कर देन जो तुंदी राह रुक कर देन सो भी सुरक्षित रहन। कार्यक्रम मंच इस प्रकार हो गया सो चलना है कुछ एक खास जानकारी के सो इस प्रकार होगी तो सो गया सो साझा करनी है लेके चलते हैं श्रोताओं तू सब भी जो इस गीतारी के नारी बने रहे जुड़े रहे रेडी गुंजन रे गूंज सो की

ছতম এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হে সবি টিউন কো রর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপা লাইভ চল রহি হিন শ্রোতাও তা দুঃখ সুখ খারাপ বুরা হো সজনা সোগি নিভায়া হো বহুত প্যারি লাইন কিয়া সো গুনগুন ওরে হে বাত জারি হে শ্রোতাও কি জো দুঃখ সুখ সো সচমা সোগি নিভে গেছা তা বাত কুছ ওর বন্দে আর পরিবার আক জুট বোয়া শ্রোতাও তা কোই বি কিয়া सो अक छोटा जहा उदाहरण दिता परिवार एकजुट बो श्रोतो तो कोई व्यक्ति तो सी तोड़े ना सकता छोटा जहा उदाहरण ये बहुत सारे इन श्रोता के सो उदाहरण ये हुनरा भी बुना घर दे कई वक्त के सो सियाने भी दीन देन जो घर रहे मोटे बुंदे न मम्मी डैडी बुंदे सो भी अक्सर किया सो कुछ जने समझाने री गल करते हैं जने परिवार में सो इनवायरमेंट बन गंदा जने सब कट्ठे बुझ गंदे और समझंदे तो बल देवे ना कि जद परिवार किया सो अक छिड़ी बंदे ना छिड़ी छोतों तह तो कोई भी किया सो बनी लेंदा ना लेकिन अक रेड़कू रकूरा बुआ ना सो रेड़कू मजाल से तस रेड़कू वो मणु छे दस मणु लगन पर सोना बसदा हा छोतों सोना बसदा अक छिड़ी तो कोई भी किया सो बनी

सकता पर आख खरा रेड को रुक रो बोना तसी हो चुके करे बानन ला कि बंद जितना मर्जी फोड़ने तसी हो चुके चुके तस ना अगर खरा बंदीरा बोला ना तो तस ना हिलना हा तस ना डुलना हा तस ना टूटना हा। तो परिवार रे भी कहानी कुछ इस प्रकार हो गई मुंदे हा सोतों और परिवार में सब चलिंदन अक्षत थल्ला के रिंदन सोता विंदे हिन बाकी तिंग अंदर के असो एकता ज़्यादा बोना चाहते हा और प्यार लगाव कि दुए हो गया कि दुए रे इज्जत मान सम्मान रिस्पेक्ट किया बहुत इंपॉर्टेंट बुंदे परिवार मन सोतों अक्सर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बुंदे हा कि मोटे रे गल किया सो स्वीकार करना। जी बिल्कुल आजकल जो आजकल री जनरेशन हा जो जेंजी जतियो है बल्लू कर दे जेंजी मतलब कि जो 2000 आले बच्चे हैं 2005 आले 6 आले 8 आले है ना ये ऐसे बच्चे इन सोतों की एक अस्सी री गल होना के असो पसंद न कर दे कुछ 90 आले भी ऐसे ऐसी गल नहीं है कुछ बुझ सकता जो 90 बोन बून सो भी ऐसे बून 2000 बोन बून सो भी ऐसे बून लेकिन हाँ ये जो जेंजी प्रोडक्ट है सो तो ये ज़्यादा कर गला होना की सब पसंद न करता अक्सर रिश्ते तड़ी बिगड़ता है इन सो तो और सब भी मोटे और अहम गल बंदे की मोटे की गल होना सो गुस्सा अंत त्यार है जहने सो गुस्सा मून तो समय किया सो इन्वायरमेंट अपना छड़ी देना सो गुस्से वाला माहौल तो थोड़ा करे तिया तो दूरी की असो बनाए लेने और जहने सो शांत बंदे तहने किसी करी तिया होगी गल करा तिया माफ़ी मंगी लिया मजाल से कदी भी कुछ किया सो परिवार मंज या कदी भी कसी भी रिश्ते में किया सो दरार चली या कदी दरार नहीं सकते सिर्फ आके जो आके माहौल बुंदा जो आके इन्वायरमेंट बुंदा तस इन्वायरमेंट जो अगर तो है संभाले लेंदे इन शो तो कदी भी कसी भी परिवार मंज गया सो न लड़ाई झगड़े भून ना ईश्व तो अक्की अंगड़ा अंतर किया सो दीवारा लगन ना ईश्व तो भाई भाई कदी लग भून ये विशेष गल्ला अगर है याद करी लैन तो है ना हमेशा बड़े भी रिस्पैक्ट की सो करना चाहिए लेकिन इंदे बिच के सो एटीट्यूड चलींदा सो अहंकार चलींदा हा सो दरार चलींदे कि मूँ कतियो करना मेरा क्या लगता या मेरी क्या लगती हा है ना स्थलियों रिश्ते खराब होना के सो शुरू बिच गंदा और सभी मट्टे और सभी थो अहंकारी गल क्या बंदे सो तो सो ये बंदे हा कि मेरा इस क्या करना हा आऊँ तो फलाना हाँ आऊँ तो फलाने हाँ मेरा इसके करना हाँ आऊँ तो फलानी जगह लग रहा या आऊँ तो फलानी जगह गया सो लग रहा तेरा तस तो कुछ ना करना लेकिन तेरा तस जो ऊपर था वो रुगरदा तस बड़ा कुछ करीना और एक नेपाल आई थिंक तो है सब जानते बुने सियाने री गल रुगरदा हूँ है ना नेपाल अग देश आ तड़ी ऐसी परलय आया कि 100 मणु तो मरेगो और सैकड़ों मणु के ना सो गायब हैं बदल फट रहा कभी कड़ी बदल फटे गच्छू करता कड़ी ग्लेशियर किया सो पिघले गच्छू करता सो फटे गच्छू करता तो शोधों प्रकृति की असो मिनट स्किंट अंदर की असो इंसान जो खत्म कर सकते असो इंसान कभी भी किसी भी गल रहा अहंकार की असो ना करे शोधों बिकॉज अहंकार तो उस परमात्मा को चल देने चुटकी भर मतलब सिर्फ सेकेंड्स लंदा सो सेकेंड्स और सब कुछ तबा और ये सब कुछ ही ठीक रह गंदा हा शोधों सो खरे करम के ना सो गाने सोगी जे अगर इन्हें पर ले चली भी गया ना इन्हें मरी मुके भी गाना है था जो आज दिन तक रहे खरे करम करू रहे ना सो सोगी गाने इन शो तो बुरे करम कदी का सीधे सोगी ना गंदे हिन सो लेकिन चल दे तू सब भी जो और अगली फरमाइश कर दें पूरी।

शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून गुर और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहना सो चल रही थी शतों घर मंच सिलेंडर गैस सिलेंडर थौकी सो आग लगे हा शोतों और सिवाज रे घटना हा शोतों अठ कमरे सुआ बुझ गए 50 लाख रुपये लगभग किया सो नुकसान दसू कर दे हैं शोतों। हिमाचल तो सेब और आलू बाहर ले जाने वाले ट्रका पर किया सो विशेष सड़क टैक्स पर किया सो छूट देते हा शोतों। पुलिस सुरक्षा रे बदले 8 लाख रे रिकवरी किया सो नोटिस बोए हा शोतों। चिट्टे रे खिलाफ ऊना मंडी में किया सो बोकथोन केवल सिंह पठानिए वे सवाल पर सीएम सुखुरा जवाब शोतों। टीम श्रीलंका किया सो बिल्कुल भारत 16 रन थो इस समय किया सो हगू हाँ शोतों। इसी सो गया ने जानकारी के नसो तुसु अब 6 बजे आए हूँ अंदे हिन 6 तो 8 बिल्कुल असू अगे बनी रहे और बहुत सारी जानकारी दतियाँ है तुसु अगे गया सो शेयर कर ले साझा कर ले। फिलहाल इजाज़त दिया मुंजो यानी कि सचिन कपूर जो हाँ बुछगो समेश तो तुसु सभी तो इजाज़त लेने रहा अब गंदे गंदे बस ये बोलना चाहूँ हंसते रहे मुस्कुरा दे रहे और रेडियो गुंजन आज हो गया सो जरूर हुन दे रहे नमस्ते धर्मशाला।

0: पानी में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में बहस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में बहस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षाबंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: प्रगति?
1: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
2: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
0: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
3: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
2: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
4: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
5: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
6: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
7: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
6: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
7: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
6: है?
7: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
7: oh, no.
8: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
2: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
8: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
9: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता?

दोबारा से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाचीज सचिन कपूर हाजिर हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। शाम हो चुकी है धर्मशाला में और इस शाम बहुत हसीन है, खूबसूरत है, प्यार भरी है और ये प्यारे प्यारे से लम्हे आप वेडी गुंजन के साथ अगर जी रहे हैं तो और भी ज़्यादा माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाता है, माहौल और भी ज़्यादा जो है वो प्यारा हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। जी बिल्कुल, और मैं नाचीज सचिन कपूर गुड इवनिंग धर्मशाला को होस्ट कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जितने भी श्रोता हमारे साथ बने हैं, जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए जी शाम मस्तानी ज़रूर रहेगी। कार्यक्रम पर आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे श्रोताओं, और बहुत सारी ढेरों जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ढेरों जानकारियों के साथ साथ गीत संगीत का पिटारा जो है श्रोताओं वो भी आप तक ज़रूर पहुंचेगा। ये धर्मशाला की शाम को पहचानते हैं पहले, क्योंकि शाम के जो है वो 6:06 जो है वो हो चुके हैं श्रोताओं, और हल्की ठंड जो है वो बिल्कुल महसूस हो रही होगी। जो दो पहिया वाहन में अपनी यात्रा तय कर रहे होंगे उनके, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है श्रोताओं। आसमान में बादल हैं और हल्की बूंदाबांदी जो है वो कुछ समय पहले हो रही थी श्रोताओं, लेकिन इस समय सिद्धबाड़ी में तो नहीं हो रही है। अलग इलाकों का हम बता नहीं सकते, क्योंकि आप सभी बखूबी जानते हैं कि मौसम जो है वो बिल्कुल श्रोताओं जब बरसात मान लीजिए कि योल में है तो सिद्धबाड़ी में नहीं है, सिद्धबाड़ी में है तो फिर धाड़ी में नहीं है। इस प्रकार का मौसम जो है वो रहता है बरसात के मौसम में, तो इस समय तो सिद्धबाड़ी में बरसात नहीं है, ये बताना चाहेंगे। नमी की बात करूँ जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, लगभग 95

शुतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया हुआ है और मैं हूं नाचीज सचिन कपूर आप सभी के रेडियो सेट पर। स्टोरीज पर तो रोज़ हमारी हंसी दिखती है, स्टोरीज पर तो रोज़ हमारी हंसी दिखती है, पर इस फेक स्माइल के पीछे की बेबसी दिखती है, पर इस फेक स्माइल के पीछे की बेबसी दिखती है। अब जो घंटों चैट पर दिल की बात करते थे, अब उनकी प्रोफाइल भी हमें रिस्ट्रिक्टेड दिखती है। चलिए जी, स्वागत है एक बार पुनः सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का, जितने भी श्रोता हमारे साथ इस समय बने हुए हैं और इस नाचीज सचिन कपूर को जो है वो सुन रहे हैं। पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ एक खास जानकारियाँ जो है वो हम आप तक पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। श्रोतों देखिए, कुदरत का कहर जो है ना वो कहीं भी किसी भी देश के कोने में कहीं भी हो सकता है। नेपाल तो हम सभी ने ये मुझे लगता है कि देख लिया होगा वीडियो के माध्यम से। श्रोतों बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो है वो रील्स वायरल हो रही हैं नेपाल में, जिस तरह से श्रोतों वाकई में तबाही मची है। ये तबाही ये रास्ता नहीं देखती श्रोतों, ये वो चार मंजिल या वो छः मंजिल नहीं देखती, ये सामने का रास्ता खुद बनाती है तबाही श्रोतों। या ये उस गांव को नहीं देखती, ये गांव के उस पुल को नहीं देखती, ये उन सड़कों को नहीं देखती, ये उन वन क्षेत्रों को नहीं देखती, ये उन पेड़ों को नहीं देखती श्रोतों, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं देखती, ये छोटे मकान नहीं देखती। ये सिर्फ जब आती है तो तबाही लेकर आती है और सब कुछ नष्ट करके जाती है श्रोतों। जी बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए श्रोतों मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा आपको, फिर हम अपनी धर्मशाला की न्यूज़ पर ज़रूर आएंगे। श्रोतों इस समय बात करूँ तो लगभग 90 से ज़्यादा लोग जो हैं उनके शव जो हैं वो बरामद हुए हैं श्रोतों, मिले हैं, और मतलब हज़ारों लोग जो हैं श्रोतों वो लापता हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ भारतीय नागरिकों सहित 385 विदेशी लापता हैं। जी बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है श्रोतों ग्लेशियर झील फटने से जो है ये नदी में अचानक आई तबाही से जो है वो ये सब तहस नहस हुआ श्रोतों। और नेपाल पुलिस के 80 जवान जो हैं वो भी इसमें लगभग लापता जो हैं वो बताए जा रहे हैं श्रोतों। बिल्कुल, और बैंक शाखा के जो हैं वो 26 कर्मचारी लापता हैं। इवन कि इस बीच में जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो हर संभव मदद का जो है वो आश्वासन दिया है नेपाल को कि जितनी भी मदद होगी वो की जाएगी। बहरहाल यही होता है श्रोतों, जब पड़ोस का हमारा पड़ोस जब साथ की गुहार करे या उसको साथ की पीड़ा हो तो उस समय साथ निभाना जो है वो पड़ोस का दायित्व बन जाता है, वो पड़ोस का कर्तव्य बन जाता है। लेकिन बहरहाल ये जिस प्रकार की बाढ़ जो है वो नेपाल में आई है, ये कहीं भी हो सकता है, ये कुदरत का कहर है श्रोतों, ये कहीं भी जो है वो गिर सकता है, ये कुदरत का कहर है, कहीं भी ढह सकता है श्रोतों। चलिए, कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियाँ हैं श्रोतों, कुछ एक जानकारियाँ धर्मशाला से जुड़ी हैं वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे श्रोतों। हालांकि पिछले कल जो है वो शीला चौक में लंबा जाम देखने को मिला सुबह के समय ही, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस जो है वो ख़राब हो गई थी, उसके पहिए एकदम थम गए थे। इवन कि मैं बताना चाहता हूँ लगभग 1 करोड़ की लागत से ये बस जो है वो ली गई है। 18 करोड़ की बसें जो हैं वो धर्मशाला डिपो को दी गई हैं, 18 बसें जो हैं वो मिली हैं श्रोतों। लेकिन फिलहाल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो ख़राब थी, लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ श्रोतों आपको कि अब उसी समय जो है वो कारीगरों को बुलाकर जो है वो उसे साइड में रखकर उसका ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि बस जो है वो इस समय
चल रही है अपने सफ़र पर। तो चलिए हम भी चलते हैं अपने सफ़र पर, और सफ़र रहेगा हमारा आपका इस टूल के माध्यम से, यानी कि आपके घर में जो इस समय रेडियो चल रहा है, आपकी आपकी दुकान में जो इस समय रेडियो चल रहा है, आपकी कार में जो इस समय रेडियो चल रहा है, श्रोतों इसके माध्यम से हमारा सफ़र भी जो है वो बेहतरीन रहेगा, प्यारा रहेगा। लेकिन चलेंगे श्रोतों, आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहेगा, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

वाकई में कमाल है ना कि हमने तुमको दिल भी दे दिया और ये भी ना पूछा कि कौन हो तुम, भला ऐसा कौन करता है भाई, ये तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि क्योंकि आज नहीं है वो समय कि दिल दे दिया और उसके बाद पूछा भी नहीं कि कौन हो तुम, नहीं तो फिर शादी के बाद बहुत कुछ पूछना पड़ता है। तो फिलहाल तो आज की जो जेंजी जनरेशन है वो कम से कम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगी कि हमने तुमको दिल ये दे दिया और ये भी ना पूछा कि कौन हो तुम, है। चलिए गुना मूवी से लिए गए गीता शदो और अलका याग्निक और बबलू सुप्रिया की आवाज़ में प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना रेडी गुंजन धर्मशाला में 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। बहरहाल मैं हूँ सचिन कपूर गीत संगीत के साथ, बिल्कुल जो मजाक है वो भी चलता रहेगा श्रोतों, और मजाक ज़रूरी भी है श्रोतों ज़िंदगी में, है ना। हस्ती मुस्कुराती ज़िंदगी निकले तो मज़ा भी आता है श्रोतों, और हस्ती मुस्कुराती ज़िंदगी ना निकले तो फिर मज़ा किस बात का, क्या कहना। चलिए लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे, और कुछ एक और जानकारियों के साथ जो है वो आप सभी श्रोताओं को हम रूबरू जो है वो ज़रूर करवाएंगे श्रोताओं। बहरहाल देखिए ये जो नशा है, चाहे वो शराब का हो चाहे वो भांग अफीम चर्स गांजे का हो, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है श्रोताओं। ये अवैध अभी भी हमारे ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ये बात है श्रोताओं की अवैध शराब जो है वो पकड़ी गई है। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना ने ये मोइन पुलिस थाना का नाम पड़ा श्रोताओं। एक दुकान में 725 अंग्रेजी शराब बरामद की हैं भाई साहब, 12 बोतलें होती हैं एक पेटी में, तो कीजिए ज़रा कैलकुलेट, 725 बोतलें जो हैं वो अंग्रेजी शराब की बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने जो है वो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है श्रोतों। पुलिस के अनुसार आरोपी की दुकान से जो है वो बरामद शराब की कुल मात्रा जो है वो 54,350 मिलीमीटर है। मामले ने पूरे इलाके में जो है वो बिल्कुल एक दहशत सी जो है वो मचा दी है। मतलब कि कारोबार ठीक ठाक था भाई साहब का, लेकिन पकड़े गए हैं। यही है ना श्रोतों कि बुरे काम का नतीजा अंत जो है वो बुरा ज़रूर होता है, और कारोबार ठीक ठाक है, ठीक ठाक शराब की बोतलें जो हैं वो उस एरिया में लगती थी, उस दुकान में लगती थी, और बावजूद इसके श्रोतों इतनी बोतलें एक समय में पाई जाना, यानी कि माड़ा मोटा ठेका जो है वो ही खोल लिया था। तो चलिए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोतों, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। और वाकई में ना श्रोतों, न जाने मेरे दिल को ये क्या हो गया, अभी तो यहीं था अभी खो गया। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आपने जो है वो सुना श्रोतों रेडियो गुंजन धर्मशाला में। और बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सी खास जानकारियां हैं जो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे, बहुत सी खास जानकारियां जो हम आप तक पहुंचाएंगे श्रोतों धर्मशाला से जुड़ी जानकारियां। फिलहाल तो श्रोतों ऐसा है कि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन्हें आप संभाल के रखिएगा, है ना जी। जो प्रकृति ने हमें इतना खूबसूरत ये मंच हमारे लिए जो है वो सजाया है, है ना, इनको अगर हम संभाल के रखते हैं तो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सी बात है। लेकिन चलते हैं जानकारी की ओर। धर्मशाला में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने की दशकों पुरानी मांग ने एक बार फिर से जो है वो जोर पकड़ लिया है श्रोतों। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार द्वारा इस मुद्दे को हाल ही में जो है वो बड़ी ही प्रमुखता से उठाए जाने के बाद जो है वो कांगड़ा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने उनके इस कदम का जो है वो पुरजोर स्वागत किया है श्रोतों। एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुर सोनी ने इस जनहितकारी और महत्वपूर्ण मांग को जो है वो नई ऊंचा देने के लिए जो है वो वरिष्ठ नेता शांता कुमार का आभार व्यक्त किया है श्रोतों। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुर सोनी ने स्पष्ट किया है कि धर्मशाला में हाईकोर्ट की पीठ का निर्माण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि यहाँ बेंच की स्थापना होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ कांगड़ा चंबा सहित निचले प्रदेश के तमाम लोगों को जो है दूर दराज के क्षेत्र को जो है वो मिलेगा श्रोतों। जो भौगोलिक दृष्टि से कठिन है, वर्तमान में इन क्षेत्रों की आम जनता को न्याय के लिए जो है वो शिमला तक की लंबी दौड़ जो है वो लगानी पड़ती है श्रोतों। दूरी जो है वो तय जो है वो करनी पड़ती है श्रोतों। इसके साथ ही अन्य जानकारियां भी जो हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं श्रोतों। अन्य जानकारियों का सिलसिला जो है वो भी यूं ही चलेगा आपके वीडियो सेट पर। आइए फ़िलहाल लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर और इस गीत के बाद श्रोतों अन्य जानकारियाँ ज़रूर साझा करेंगे।

धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना वेड़ी गुंजन पर। कसम खा के कहो, नजर झुका के कहो कि तुम्हें हमसे प्यार है कि नहीं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, श्रोताओं अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्री मणि महेश यात्रा 2026 का बुधवार को आधिकारिक तौर पर जो है वो आगाज़ हो चुका है। श्रोताओं बुधवार को करीब 253 श्रद्धालु मणि महेश के पवित्र डल में डुबकी लगाने के लिए जो है वो मुख्यालय से रवाना भी हो चुके हैं और इस समय डुबकी लगाकर जो है वो मुझे लगता है वापस भी आ चुके होंगे। श्रद्धालुओं को मणि महेश यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएँ भी जो हैं वो उपलब्ध

करवा दी गई हैं। श्रोतुम, उल्लेखनीय है कि इस बार मणिमहेश यात्रा 2026 का आधिकारिक तौर पर आयोजन 25 अगस्त से 20 सितंबर तक किया जा रहा है। पिछले वो जो बारिश के कारण जो है वो पिछले से पिछले वो जो है वो श्रोतों को बारिश के कारण जो है वो यात्रा को रोका गया था। पैदल मार्ग की हालत ख़राब होने के चलते जो है वो श्रद्धालुओं को हर स्तर पर ही जो है वो रोका गया था। श्रोतों, आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो आइए श्रोतों, बताना चाहते हैं फिर सुबह 4 बजे से जो है वो यात्रा अधिकारी के तौर पर यात्रा का आगाज जो है वो कर दिया था। बताना चाहते हैं श्रोताओं की दंड अधिकारी भरमौर विकास शर्मा ने जो है वो श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा निर्धारित समय एवं मार्ग का पालन करने के साथ साथ जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करने की जो है वो अपील की है। श्रोताओं, श्रोताओं 12 को रवाना होगी दशानम जूना अखाड़ा की छड़ी। श्रोतों, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला, गीत संगीत का सिलसिला श्रोतों यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आज सचिन कपूर के साथ लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यार

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कल है रक्षाबंधन। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा श्रोतों रक्षाबंधन का है ना जी। अब इसमें जो है वो शुभ मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगा श्रोतों शुभ मुहूर्त की बात, ये तो थोड़ा सा आप सभी से जो है वो मजाक करते हैं। आप अपने अपने जो पंडित होते हैं श्रोतों है ना, अपने कुल के जो पंडित होते हैं उनसे जो है वो इस बारे में जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कब जो है वो शुभ मुहूर्त रहता है रक्षाबंधन का। चलिए, थोड़ी सी गले में दर्द है श्रोतों, उस वजह से हल्की सी दिक्कत जो है वो मुझे हो रही है बोलने में भी, लेकिन समय के साथ सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं श्रोतों। फिलहाल रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है श्रोतों। ये त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जैसे कि हम सभी बखूबी जानते हैं। कल 28 अगस्त को जो है शुक्रवार के दिन जो है ये शुभ मुहूर्त है, ये शुभ अवसर है, ये शुभ दिन है श्रोतों, राखी का बंधन श्रोतों। देखिए अलग अलग तरीके से सभी बताएंगे आपको टाइमिंग है ना, लेकिन मुझे लगता है जो आपके पंडित हैं वो आपको सही तरीके से जो है वो बता सकते हैं। थाली तो बहुत तरीके से जो है वो सजाई जाती है, एक सुंदर थाली में राखी है ना रखी जाती है, साबुत चावल जो है वो रखे जाते हैं, दीपक भी जलाए जाते हैं और मिठाई तो अक्सर खिला ही जाती है श्रोतों। चलिए, कार्यक्रम में श्रोतों और भी बहुत सारी जानकारियां हमें, ये वक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं है श्रोतों, ये पवित्र धागा है। भाई और बहन के बीच अटूट विश्वास और सुरक्षा का संकल्प है कल का दिन। जी बिल्कुल, रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा थोड़ी ना है श्रोतों, भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई और बहन के बीच अटूट विश्वास है, ट्रस्ट है, सुरक्षा का एक संकल्प है श्रोतों। इस त्यौहार का संबंध भगवान कृष्ण और द्रौपदी, राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथाओं से जुड़ा है श्रोतों, जो हमें अपनी रक्षा करने की सीख देती है ये कहानी श्रोतों। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ज़रूर हम सभी आपसे इसके बारे में जो है वो डिटेल से आपको जानकारी इस गीत के बाद जो है वो ज़रूर देंगे श्रोतों।

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आज तो जितनी भी बहनें हैं वो सभी अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए, मुझे अभी अभी जो है वो पता लगा कि बाज़ार में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रौनक है, बाज़ार में इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा रौनक है। और बाज़ार की रौनकों की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो वाकई में ही बा कमाल होती हैं। और आज तो वैसे भी बहुत कमाल होंगी क्योंकि सजी हुई राखी की दुकानें होंगी, है ना, बाज़ार में हर तरफ अस्थाई स्टॉल लगे होंगे श्रोताओं। अलग जाते हैं जहां रेशम के धागे, चंदन, मखमली, ब्रेसलेट, कार्टून की बनाई हुई वो बच्चों के लिए राखियाँ, सोने चांदी के सुंदर डिज़ाइन चमकती हुई वो राखियाँ, और ख़ासकर मिठाई की दुकानों में भी भीड़ जो है वो ज़्यादा रहती है। इस समय भी बाज़ार बात की जाए श्रोताओं तो कोतवाली, कचहरी, योल, शीला चौक, इन जगहों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। मिठाई की दुकान में भी, हलवाई की दुकान पर श्रोताओं, जैसे कि हम सभी जानते हैं काजू कतली, रसगुल्ला, तरह तरह की मिठाइयाँ, है ना, तरह तरह के लड्डू के डब्बे जो है वो ऊँचे ऊँचे पहाड़ों की तरह जो है वो आज सजे होंगे श्रोताओं, क्योंकि कल तो है रक्षाबंधन। चमकते कपड़ों के शोरूम भी, भाई बहन त्यौहार पर नए कपड़े पहनते हैं श्रोताओं, इसलिए कपड़ों की कपड़ों और पारंपरिक कुर्तों, साड़ियों की दुकानों पर भी जो है वो पैर रखने की जगह जो है वो हो सकता है इस समय ना हो, क्योंकि शाम का वक्त है, 7 बज चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा रौनक जो हैं वो इन बाज़ारों में हैं। बहरहाल 7 बज चुके हैं श्रोताओं, हम लेके चलेंगे आपको समाचारों की ओर। बने रहेगा, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की सी गूंज के साथ।
1: संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने ये श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गैस पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में फंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में फंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

0: बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: शोध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है। शोधो चलिए तो हमारी एंकर ज्योति पठानिया जी ने बताया है आप सभी को काफ़ी टाइम से जो है वो मुबारकबाद चली है, ये वीक मुबारकबाद का जो है वो चला हुआ है शोधो। और हमारी ओर से भी पूरे परिवार की ओर से हम बता रहे हैं, बार बार ही मुबारक आपको दे रहे हैं श्रोताओं, तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की यह कथा महाभारत काल में क्यों रक्षाबंधन, एक कई कहानियां हैं श्रोताओं, एक कहानी सुनाने का प्रयास जो है वो ये नाचीज भी करेगा श्रोताओं, है ना जी। तो आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। गले में दर्द है, कोशिश जारी है। एक बार श्रोतों इंद्रप्रस्थ से राजा युधिष्ठिर के वात्सुर्य यज्ञ के दौरान जो है वो शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का घोर अपमान किया श्रोतों, तब कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। सुदर्शन चक्र को वापस उंगली पर आते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी इंडेक्स फिंगर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है श्रोताओं, उसमें गहरी चोट लग गई श्रोताओं और खून बहने लगा। वहाँ कई रानियाँ और सखा मौजूद थी जो पट्टी खोजने दौड़ पड़ी, लेकिन द्रौपदी ने एक पल भी देर न की, एक पल की भी देरी नहीं की श्रोताओं। उन्होंने तुरंत अपनी कीमती रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण जी की उंगली पर जो है वो बांध दिया। इससे खून बहना जो है श्रोतों वो बंद हो गया। भगवान कृष्ण द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम से बहुत भावुक हुए श्रोतों। उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और वचन दिया कि बहन, इस साड़ी के एक एक धागे का खर्च मैं समय आने पर चुकाऊंगा। सालों बीत गए। सालों बाद जब भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीर हवन अपमान करने का प्रयास किया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी माया से द्रौपदी की साड़ी को जो है वो बढ़ा दिया, अनंत बढ़ा दिया और उनकी लाज बचाई। तभी से बहन द्वारा भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधने और भाई द्वारा रक्षा का वचन देने की परंपरा शुरू हुई श्रोताओं। और भी बहुत सारी कहानियां हैं श्रोताओं, कुछ कहानियां बताती हैं कि राखी का धागा कितना शक्तिशाली होता है, ये साक्षात भगवान को भी जो है वो बांध लेता है। ये कहानी भी जो है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ सचिन कपूर। शोतो वाकई में मैं कह रहा था ना कि जो बाजारों में इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे फिर वो जहाँ पर राखी रखी गई हैं वो शॉप्स हो, वो दुकानें हो, हर जगह जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है शोतो। और ये भीड़ होनी भी चाहिए क्योंकि त्यौहार है हमारा, भाई बहन का ये पवित्र रिश्ते का ये बहुत प्यारा सा त्यौहार है श्रोताओं। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आइए जी लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को एक यमराज और यमुना की कथा है श्रोताओं, इसके बारे में बताएं। ये कहानी मृत्यु के देवता और उनकी बहन की अटूट प्रेम को दर्शाता है श्रोताओं, दर्शाती है ये कहानी। मृत्यु के देवता यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि वह अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे श्रोताओं। यमुना जो है वो उन्हें बहुत याद करती थी। श्रावण पूर्णिमा के दिन यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के घर पहुँचे। यमुना की खुशी का जो है वो ठिकाना नहीं रहा श्रोताओं। उन्होंने भाई का तिलक किया, आरती उतारी और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनका मुंह मीठा कराया श्रोताओं। यमराज अपनी बहन के इस स्वागत से इतने खुश हुए कि उन्होंने यमुना से वरदान मांगा, वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, भैया आप हर साल इस दिन मुझसे मिलने आए और जो भी बहन इस दिन अपने भाई को राखी बांधे उसे आपका मृत्यु का भय ना रहे, डर ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहा। तभी से भाई की लंबी उम्र और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए राखी बांधी जाती है जनाब। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जनाब, ये जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं आप तक वेड़ी गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से। और आइए लेके चलते हैं आप सभी को अब श्रोताओं इस गीत की ओर, और गीत संगीत का ये दौर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही भागता रहेगा। बने रहिएगा सचिन कपूर के साथ।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो चल रहा है आपके वीडियो सेट पर बिल्कुल लाइव और रेडी गुंजन की गूंज के साथ आप सभी श्रोता जो हैं वो बंधे हुए हैं, बिल्कुल श्रोताओं बंधे हुए हैं। और ये बंधे हुए से मुझे याद आया श्रोताओं, वो गीत है ना धागो से बांधा, हाँ मुझे याद आया। आइए ना तो पहले इस गीत को सुनते हैं श्रोताओं, क्योंकि रक्षा बंधन का ये कल का दिन है श्रोताओं और बाजार आज सजे हुए हैं, सेलिब्रेशन जो है वो आज से शुरू है। जिस तरह से हमें होता है ना कि सैटरडे हो तो सैटरडे की शाम को ही वो खुशी होती है, संडे की शाम को वो छुट्टी वाली खुशी नहीं होती, तो आज शाम को ही वो खुशी है, आज शाम को ही वो लहर है, वो ताज़ी हवाएं चल रही हैं इस समय रक्षाबंधन की। तो ये गीत तो बनता है श्रोताओं सुनना।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रोतो अब देखिए रक्षाबंधन का ये प्यारा सा पर्व है और आप सभी को पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस पर्व की। और तो श्रोतो अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं श्रोतो अंतराल के बाद।

0: पानी में भैया गई
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: कहां से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में बहस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में बहस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी सी ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: Oh,
9: no. इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन
0: पाएगी। कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता?

छोटो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की होश।

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और 7:45 हो चुके हैं श्रोतो। तो अब लेके चलते हैं आप सभी को प्रादेशिक समाचारों की ओर।
1: पर्व पर सार्वजनिक अवकाश किया घोषित, महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा। और प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले का विपक्ष ने किया विरोध, सरकार का तर्क, एसओपी के साथ शुरू होगी लॉटरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के निर्माण में देश की खेल प्रतिभा और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत में खेल एक बेहतर करियर और पेशे के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि खेल केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि बेहतर प्रतियोगी बनना भी सिखाता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से सुना गया। सिरमौर जिला के कालाअंब में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का काम करेगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने खेलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।
3: 12 वर्षों में हमारे देश के युवाओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपना योगदान दिया, चाहे ओलंपिक्स गेम है, चाहे पैरालंपिक्स है या दूसरे गेम्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि हम सबको अपना अधिक से अधिक समय खेलों में हिस्सा लेने में व्यतीत करते हुए नशे से मुक्त भी हमारा युवा रहे। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसमें भी इस देश का युवा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से आह्वान किया।
1: उधर कांगड़ा में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं व खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, अनुभव और विचार साझा करने के लिए बेहतर मंच प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में बने 4-लेन में वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ाई जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 4-लेन में स्पीड प्रति घंटा 60 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि स्पीड के कारण 4-लेन में कोई दुर्घटना ना हो, और इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से सर्वे कराया जाएगा। विधायक मलिंद्र राजन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्पीड़न मामले पर शिकायत दर्ज करने को लेकर सरकार नया नियम बनाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायत को गोपनीय रखने के लिए नियम बनाए जाएंगे, ताकि महिलाएं अपनी शिकायत को पूरी तरह व्यक्त कर सकें। विधायक राकेश कालिया के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 7,59,05,479 पर्यटकों का आगमन हुआ है। विधायक बिक्रम सिंह और सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने जानकारी दी है कि वर्ष 2023 की आपदा के लिए विशेष राहत पैकेज अधिसूचित किया गया था। प्रदेश में रक्षाबंधन के पर्व पर कल 28 अगस्त को सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और भावनाओं से जुड़ा विशेष पर्व है। ऐसे में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अवकाश देने का निर्णय लिया गया है, ताकि सभी लोग इस त्यौहार को साथ मिलकर मना सके। सके। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। इसके तहत महिलाओं से प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिए सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
4: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
5: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
4: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
6: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
7: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश सरकार ने राज्य में 12 से 15 वर्ष की आयु वाले अनुबंधित यात्री वाहनों यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल के संचालकों को फिलहाल राहत दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा और वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर आज सदन में वक्तव्य के माध्यम से सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर अनुबंधित यात्री वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष नहीं कर सकती और मोटर वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में केंद्रीय प्रावधान में बदलाव के बिना राज्य स्तर पर आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लेना संभव नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के तहत वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई है और ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटर्स के आग्रह पर केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय आने तक 12 से 15 वर्ष की आयु वाले ऐसे वाहन जो प्रदेश की सीमा के भीतर संचालित होते हैं के चालान न करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में दीपावली से पहले लॉटरी शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने निजी फायदे के लिए युवाओं को बर्बाद कर रही है। वहीं सरकार ने तर्क दिया है कि प्रदेश में लॉटरी एसओपी के साथ शुरू की जाएगी। विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लॉटरी भाग्य का खेल है और किसी व्यक्ति पर इसे खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है, जिसकी इच्छा होगी वही लॉटरी खरीदेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर दिए गए पत्र और उठाए गए सवालों पर भी गौर किया जाएगा।
9: कोई फोर्स नहीं है कि किसी को लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा। जिसकी इच्छा है, जिसकी चाहत होगी वो लॉटरी ले, जिसकी इच्छा नहीं होगी, जिसकी चाहत नहीं होगी वो ना ले।
1: दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी आर्थिकी सुधारने के लिए लॉटरी को फिर से शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि लॉटरी के कारण प्रदेश में पहले भी कई घर बर्बाद हुए हैं और इसी कारण भाजपा सरकार ने इसे बंद किया था। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार युवाओं को बर्बाद करने के लिए लॉटरी शुरू कर रही है।
10: जो लोग इस लॉटरी को जबरदस्ती लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, साफ मंशा यही जाहिर होती है कि आप इसके पीछे प्रदेश का आर्थिक हित नहीं, अपना निजी आर्थिक हित। और लॉटरी जब बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों के घर बिक गए, जमीन बिक गई, जेवरात बिक गए, चाहे वो नशा चिट्ठे का है, चाहे वो नशा किसी दूसरी चीज का है, उसी तरह का ही नशा। और इस लत में कोई आदमी अगर लग जाता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता कि वो कितना नुकसान कर रहा है। नहीं, हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी जो है वो बर्बादी की ओर बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इस सारी चीज को लेकर के सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस वक्त लॉटरी की शुरुआत करके एक नया रास्ता उस तरह से बर्बादी के लिए खोलना चाहिए।
1: कांगड़ा जिला के देहरा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कुलवंत सिंह पोटन ने नोडल अधिकारियों से मतदाता जागरूकता गतिविधियों को समाज व समुदाय तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज देहरा में ELC 2.0 लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कुलवंत सिंह पोटन ने लोकतंत्र को अधिक जीवंत व सहभागी बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कार्यशाला का आयोजन इलेक्शन कानूनगो रीमा ठाकुर व इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण द्वारा किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में बने फोर लेन में वाहनों की स्पीड लिमिट 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर करने पर विचार कर रही सरकार। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। महिलाओं को HRTC की बसों में निःशुल्क यात्रा। और प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले का विपक्ष ने किया विरोध। सरकार का तर्क, SOP के साथ शुरू होगी लॉटरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः मैं स्वागत करता हूँ, नाची सचिन कपूर। तो श्रोतो, अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। एक बार पुनः आप सभी को कल रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ये पवित्र त्यौहार जो है वो आपके जीवन में यूं ही हर टाइम जो है वो खुशियां लाता रहे, और भाई बहन का प्यार आपस में यूं ही खिलता रहे, संवरता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूं इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और झूमते रहिए, झुमाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: पानी में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और प्रतीक

हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जांबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तुमने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: ओह नो,
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है?

0: पानी में भैया
1: भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया।
3: जी बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहाँ से उठा के लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षा

बंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: Oh, no.
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
1: काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: देवीर, आपकी बेटी की किडनीज बर्थ से ही बहुत कमजोर है। अब जैसे जैसे वो बड़ी होगी डायलिसिस पे डिपेंड करना होगा और कुछ सालों बाद ट्रांसप्लांट। इट्स गोइंग टू बी अ टफ रोड अहेड डेविड।
1: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: गिलास पानी में भैया
1: से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल।
2: बची खुची भैंस भी गई पानी। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया
3: जी। बाबूजी पानी।
2: ये पानी तो गंदा है।
0: ये कहाँ से उठा कर लाया तू?
3: बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई।
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
5: अब पानी में भैंस नहीं स्वच्छता करें।
4: जल है तो कल है।
6: प्रकृति में घुली सावन की सौंधी महक और रातों में बढ़ती चांद की चांदनी हमें याद दिला रही है कि आत्मीयता का सबसे बड़ा उत्सव आने को है। माता पिता के आशीर्वाद से महकता रक्षा बंधन का ये पर्व हमें इसके व्यापक और

राखी का असली मकसद सिर्फ एक कलाई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा का संबल देना है जो समाज और देश की ढाल है। इस पावन अवसर पर कोई भी अपने आप को एकाकी महसूस न करे। रक्षा का ये संकल्प सीमाओं का मोहताज नहीं, सरहद पर देश की आन बान और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हमारे जाबाज सैनिक ही तो हम सब के सबसे बड़े भाई हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके हमारी रक्षा में डटे हैं। तो आइए आने वाले इस रक्षाबंधन पर देश के रक्षकों और अपने अपनों को दुआओं का रक्षा सूत्र भेजें। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
1: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
2: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
3: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
0: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
2: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
4: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
0: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
5: समझदार व्यक्ति मशीन नहीं होता, उसको तकलीफ होती है, उसको बुरा लगता है, उसको रोना भी आता है, पर समझदार बनने का बोझ इतना उसके कंधों पर आ जाता है कि वो बता नहीं पाता। उसको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मुझसे तो सबको हिम्मत मिलती है।
6: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
7: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
8: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
7: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
8: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
7: है?
8: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: अच्छा, मैं 3-2-1 करूंगा। हाँ। तो मैंने गंदी से ऐसे करके शक्ल बनाई है, ऐसे।
8: Oh, no.
9: यार इतनी गंदी सी शक्ल तो तुम ही बना सकते हो, मुझसे तो नहीं बन पाएगी।
0: कोई बात नहीं, तुम नेचुरल रख लो, सेम ही लगेगी। रेडी?
9: मुझे नहीं बनानी तुम्हारे साथ वीडियो।
10: काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है?

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।